0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
4: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
4: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
6: safewayrider.co.uk।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर,
8: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
4: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर,
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
7: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
11: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: safewayrider.co.uk।
4: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: Anokhi waza hai, sare zamane se nirale hain. Ye aashiq kaun si basti ke yaarab rehne wale hain?

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग services.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है
7: और खुशबू

0: लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford BD95ER 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान, महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD9 5VR, 01274491।

0: to Pakistan Jewelers.
1: Na hi bachu ka koi safe mustaqbil na hamara. Kab tak aise hi karenge guzara?
2: Are safe rider jayenge, driving instructor banke khub paise kamayenge, bachon ko driving bhi sikhayenge.
1: Bus, truck, forklift, taxi license. Hum hai aapko sab kuch sikhane ko taiyar.
2: 30 saala Bradford ka sabse bada purana aur qabile aitmad naam Safe Rider.
1: DSA audit approved instructors, automatic and manual cars, online theory classes ki sahulat. Aaj hi visit kijiye.
2: 33 Wetley Lane, Bradford 01274201679.
1: safewayrider.co.uk.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
3: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
5: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
6: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229627
5: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी

0: नई जगह जाने को जी जा रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: afternoon.
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट,
10: 01274201679। UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
8: हर सम्त मचा है जिसका शोर।

0: वो है मैनिंगम सुपर स्टोर, मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
8: Bilkul ji, wazir samin ikram. ब्राफडेशन रेडियो 1413 AM है, जो इस वक्त मकबूलियत की और शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। अल्लाह करीम का डेरों डेर शुक्र इसके लिए। और मदर सामीन इकराम, इसमें कुछ शक नहीं कि आप सबका जो साथ है वो इसमें काबले सद एहतराम है, क्योंकि आप की वजह से हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इतनी शोहरत की बुलंदियों को छूने जा रहे हैं। बहुत अल्लाह करीम का शुक्र और आप सबका भी शुक्रिया। हमारी वेबसाइट ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .UK और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। आज के प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन जो है सॉन्ग्स की, वो कुछ ऐसी मैंने तरतीब दी है कि आप सब की जो आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सिलेक्शन जो है सॉन्ग्स की वो तरतीब दी गई है। ऑब्वियसली ये जो सॉन्ग्स होते हैं, प्रोग्राम्स जो होता है और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके लिए होते हैं, ताकि आपका बेहतरीन वक्त गुजरे। और चलिए, आज हम जो है एक ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं, खूबसूरती के ऊपर, खूबसूरतियों का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक गिफ्ट है वो आप सबके सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाहु जमीलु व युहिब्बु जमाल, तो वो खुद खूबसूरत है, वो क्रिएटर, वो खालिक़े कायनात, और फिर کائنات کی, اور پھر آپ کو پتہ ہے مذہبی, پھر وہ آپ کہیں گے کہ مذہبی ہو, اور ویسے بھی مذہب اور ہم دنیا ظاہری بات ہے کہ ایک ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں, تو پھر وہ تو سارا آپ کو پتہ ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے. اللہ پاک نے کیسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر سب, اگر وہ سارا گھرانہ دیکھا جائے تو کتنا بیوٹیفل ہے. اب میں بات جو اصل میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا کو ہم کس اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ جو بیوٹی ہے, بیوٹی آف نیچر کہہ لیں, اور اللہ تعالیٰ کیا حسن جو ہے وہ کہاں کہاں ہم نے تلاش کرنا ہے, اور اس حسن کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور یہ حسن جو ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ بیوٹی جو ہے, یہ اس کے اندر ایک ایسی پاور, ایک ایسی قوت اور طاقت رکھ دی ہے کہ یہ بیوٹی جو ہے یہ ڈوبتے کے لیے, وہ کہتے تنکے کا سہارا بھی بن سکتی ہے, اور ہماری خوبصورت باتیں جو ہیں, خوبصورت الفاظ جو ہیں, دوسروں کو زندگی میں جینے کی طرف لے کے آتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, اور یہ خوبصورتیوں کا جو سفر ہے ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ خوبصورتیوں کا سفر ہم جتنا بنائیں گے, بنائیں گے اور سنواریں گے, اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمارے ساتھ جو سرپرائز رکھا گیا ہے اس میں اسپیشلی آپ کے لیے جو ہے بیوٹیفل کیسے رہنا ہے, آپ کی جو, اگر میں نے بہت کچھ بتا دیا تو اس جسٹ لائک اے کلیوز دے رہی ہوں میں آپ کو. یہ نہیں ہے کہ میں سرپرائز توڑنا چاہ رہی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے رہیں. آپ یقین کریں کہ آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھنا اس وقت ہمارے پروگرام کا ایک بہت امپورٹنٹ جز, جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ پارٹ ہے. کہیں مت جائیے گا, اینڈ تک ہمارا پروگرام سنیے گا, اور اتنا آپ لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انفارمیشن اکٹھی کریں گے کہ آپ کو اپنی بیوٹی کا خیال رکھنے کے لیے کہیں دور دراز جگہوں پر بالکل بھی نہیں جانا پڑے گا. آئی پرومس یو. جی بالکل, آئیے خوبصورت سا نغمہ جو ہے وہ سنتے ہیں.

जी सामईन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर आयशा अख्तर आपके लिए खूबसूरत सा दिलचस्प सा प्रोग्राम जो लेकर बैठी हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को एंड तक हमारा इंजॉय कीजिएगा और हमारी वेबसाइट ब्रफरेशन रेडियो .co.uk, स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677, हमेशा की तरह आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा और हमेशा की तरह आप हमारा प्रोग्राम जो है बड़ी दिलचस्पी से सुनेंगे। जी वैसे थोड़ा जहा असी पंजाबी का जरूर सहारा लवेंगे, इसलिए कि जितने भी साढ़े सुनने वाले होंगे उन्हां दी बड़ी यह दिल दी एक जड़ी आरजू ते तमन्ना हुंदी कि जी साड़ा प्रोग्राम जड़ा ओ पंजाबी च जरूर पेश किया जाए। तुहानूं पता कि साड़ी कम्यूनिटी जड़ी है उहदे विच अपनी कम्यूनिटी तो अलावा जिहड़े होर भी साढ़े इधर डिफरेंट जो रिलीजन कह रहे कल्चर तुसी असी कह लईए कि उन्हां दे लोग और साढ़े असी इस तरह इत्थे इस सोसाइटी दे विच मैं कहांगी कि ये वाकई एक काबले दाद जिन गल कही जाती है कि असी रल मिल के जिथे भी कोई साड़ा बाहर कारोबार होवे, लेन देन का कोई ताल्लुक होवे, मामला होवे या साड़ी तफरी तबा का कोई प्रोग्राम ही क्यों ना होवे। तुहानूं पता कि वड्डे वड्डे प्रोग्राम्स भी इत्थे जिहड़े आ कंसर्ट्स जिहड़े आ कंसर्ट इत्थे इत्थे हुंदे ही रहिंदे आ ब्रैडफोर्ड दे विच भी स्पैशली। तो उत्थे फिर असी जिहड़ा ना इन्हां सारियां चीज़ां नूं एक साइड रख के साइड ते रख के बस ये हुंदा कि सारे जिहड़े इत्थे मिलन वरतन वाले लोग आ आपस दे विच उस चीज़ नूं जिहड़ा एक फन आ एक आर्ट आ उहदे तों महसूस हो रहे हुंदे, लुत्फअंदोज़ हो रहे हुंदे। तो अज भी ए पूरी कोशिश आ कि हुंदा किसी जिहड़े ते मिलन वरतन दे लोग आपस विच उस चीज़ नूं जिहड़ा एक फन एक आ उहदे महसूस हो रहे हुंदे, लुत्फअंदोज़ हो रहे। अज भी पूरी कोशिश

0: ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਨ, ਉਹਦਾ ਆਰਟ, ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ, ਹੁਨਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਸੀਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨ ਉਹ ਜਮੀਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵਾ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677. Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
9: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
10: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
9: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: معزز سامعین کرام، پرافرید

0: 1349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: জি মজা সামাই ইকরাম ব্রাফারিশন রেডিও 14:13 AM পর আয়শা আখতার কে সঙ্গ আজ কা খুসুসি প্রোগ্রাম জো কি মানে আপকে লিয়ে সারপ্রাইজ জো থা ও ছুপা কে রাখা থা তো ডিসক্লোজ হোনে ওয়ালা হ্যায় অর ওয়ান্ডারফুল সি পার্সোনালিটি জিসকা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন অভি মানে আপকে সামনে খোল কে রাখ দিয়া তো শাজিয়া কে সাথ হামারে বহুত হি দিলচস্প কোয়েশ্চন আনসারস হোঙ্গে অভি হাম উসকো শাজিয়া কো জো হ্যায় آن لائن ابھی وہ آن ایئر ہے جی ہمارے ساتھ اور شامل گفتگو ہے اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ brafarishanradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے اور آپ ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہوں گے اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر گاڑی میں بھی ڈی اے بی پر آپ ہمیں سن رہے ہوں گے اس وقت ہمیں بہت دور دراز سے پاکستان سے بھی جوائن کیا ہوا ہے ہمارے لسنرز نے تو ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم آپ کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی پسند کا کوئی بھی کوئسچن آپ کی سکن سے ریلیٹڈ ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے شازیہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جی شازیہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی یہ بھی ہمیں چیک کرنا پڑے گا جی ونس اگین شازیہ السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سو ہاؤ آر یو ٹوڈے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کچھ اور لسنرز کے لیے ہم منتظر ہیں جی شازیہ جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہر لینگویج آلموسٹ میں کہوں گی کہ آل لینگویجز اپارٹ فرام انگلش شی کین اسپیک ماشاء اللہ اردو پنجابی ایز ویل تو آپ پنجابی اردو اور انگلش میں کسی بھی لینگویج میں جو ہے شازیہ سے بالکل سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس وقت اگر آپ ہمیں جوائن نہیں کر رہے فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ووڈ لائک ٹو آسک اے فیو کوسچنز ٹو شازیہ یس شازیہ پلیز ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ ہاؤ ڈیڈ یو گو فرام ورکنگ ان ایویشن ٹو بیکمنگ انوالوڈ in the skin and aesthetic industry.
1: So my background was aviation. I used to work for British Airways as a cabin crew trainer. Whilst I was having my children, I started doing some training in beauty. I just had an interest in beauty and skin. Then my circumstances changed and I had to fall back onto my qualifications. And then I started developing further skills and knowledge and going on to further courses for skin. And then came along skin architect.
0: Wow, good. So my second question is this, what made you create skin architect and what did you want to do differently?
1: I wanted to be apart from the general beauty salons. I wanted to use high-end quality products that have scientific backing, technology that has scientifically proven backing, and also the treatments.
0: Good. I would like to ask you, what are the most common skin concerns you are seeing in the clinic?
1: So the most common skin concerns that we do see is pigmentation, acne, acne scarring, anti-aging. Mm-hmm. Skin rejuvenation, and we have many treatments and protocols that we can go down to help our clients.
0: Oh, okay. So my next question is this. Bradford has such a diverse population. Are these particular skin concerns you see more frequently in Asian and darker skin tones?
1: Absolutely. So we see a lot of pigmentation, uh-huh. and it could be post-inflammatory, it could be due to acne inflammation, it could be irritation or trauma, it could be melasma, which is hormonally induced pigmentation. So there's many triggers. So we do a full consultation, a skin analysis scan, We would look at the history of the client, we would look at the medical history, what the triggers are, and try and find out how we can treat the pigmentation and also reduce it. Sometimes it's very difficult to say that we will get rid of their pigmentation, because they may have pigmentation that have ongoing triggers due to hormones or sun-induced. So we would say that we help to reduce it or keep it at bay.
0: Okay. That's fine. So because our listeners are not joining us yet, and hopefully they understand our conversation and really like it, obviously, is for you. And you can, my beautiful listeners, you can make a call to us and ask more questions, further questions to Shazia. And for your kind information, I am trying my best to ask the best questions on your behalf as well. Obviously, we are living in Bradford, and we are, you know, facing the same problems and same conditions sometimes. So I hope these questions and answers are very helpful to you people. I hope that, hopefully, or otherwise, it's very silence and very peaceful. Jaise kehte hain ki environment is so calm environment in here. So it's okay, it's all right. So if you are just listening, so it's all right. Okay. So I would like to ask Shazia my next question. Why can pigmentation be so difficult to treat, and can it ever be permanently cured?
1: It depends. Sometimes the pigmentation can be hormonally induced. So we like to say we try to manage the pigmentation rather than curing the pigmentation.
0: Mm-hmm.
1: But if it's just sun-induced, we can generally help to treat that and keep it at bay. We would need to use like tyrosinase inhibitors, which are like pigmentation inhibitors. And once the pigmentation has been cured or reduced, patients may find that they don't need to use those inhibitors. But if they go on holiday, they may find that their pigmentation increases. So they may need to try different products or start to use the inhibitors once again. But sun protection is the most important thing.
0: Yeah, that's my next question. It's a very important question, because we can't see, you know, sunlight over it. Usually is really darky days.
1: Yeah.
0: So my question is this: we live in Bradford and don't exactly have sunshine, especially every day. So do we really need SPF all year round?
1: Absolutely.
0: And darker skin tones need SPF too?
1: Darker skin tones tend to have melanin in their skin, which gives them their own personal protection.
0: Mm.
1: But that doesn't mean that they do not need to use SPF all year round.
0: Mm.
1: SPF is just not for a sunny day. They would need to use SPF all year round, because the UVA rays are always present, and those are the rays that age you.
0: Wow, it's new information for me too.
1: Absolutely.
0: I like it.
1: SPF should be part of your skincare. Not something that you just apply if it's a sunny day.
0: Oh, yeah. मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जाहिर बात है कि हमारा तीनों लैंग्वेजेस में प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा सा विमेन स्पेशली के हम स्पेशली इन यू नो इन ब्राडफोर्ड वी डोंट बॉदर अबाउट दीज एसपीएफ. हम कहते हैं कि बस जस्ट मेकअप कैन एनहांस आवर ब्यूटी, और यू नो स्पेशली वो टोनर एंड द फाउंडेशन कैन हाइड ऑल आवर पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली. सो इट्स गुड इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एसपीएफ मैं भी अब रेगुलरली कोशिश करूंगी कि इसे एग्जैक्टली जो आवर टुडेज टॉपिक इज स्पेशली रिलेटेड टू ब्यूटी, के हमारी ख्वातीन जो है वो हम ऑब्वियसली हम सब खूबसूरत बनना चाहती हैं. तो मुझे एक कॉल मौसूल
1: मेंटेन करना चाहती
0: मेंटेन तो वाकई हमेशा के लिए परमानेंटली करना चाहते हैं. तो वो मुझे कहते हैं कि जी दिस शोभा इज यू नो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वीमेन. आई सेड हाउ कैन यू से दैट, ये तो नहीं है कि आप वो कहते हैं नहीं जी वी डोंट बॉदर मेन, दे डोंट बॉदर अबाउट देयर ब्यूटी नाउअडेज. अब तो मैं देख रही हूँ ऑनेस्टली, मैं मुझे आपने याद करवा दिया, मैं सफर कर रही थी अपने बेटे के साथ जा रही, तो सैलून में हमने देखा कि वो एक लड़का है यंग और बाकायदा उसके जो फेशियल है और वो जो हम करते थ्रेडिंग और इवन मैं अगर फ्रेंकली स्पीकिंग के प्लकिंग तक वो मैं हम देख रहे थे और मैंने मेरा बेटा कहते मॉम इजी अ मैन ऑफ, आई सेड ऑफ कोर्स वो आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो, क्या है तुम्हारे सामने. तो कहते हैं ओ रियली जी, मैंने कहा बच्चू किस दुनिया में पहुंच गए हो, अब तो आजकल हर कोई अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहा है.
1: Doing a 10-step routine.
0: Exactly.
1: So they want to start looking after their skin.
0: Absolutely,
1: they are gaining more knowledge and it's becoming the norm.
0: अच्छी बात है ना कि हमारे बच्चे जो है अच्छा सीख रहे. मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, अदरवाइज तुम तो बॉदर ही नहीं करते हो, तो अब देख लो कितने कुछ मेंस जो है ना वो कर रहे हैं. खैर मौजूद सामईन इकराम, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो भी चलता रहेगा और हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है अपनी होस्ट को, अपनी प्रेजेंटर, अपनी गेस्ट को जो है खूबसूरत सा प्रोग्राम में एक हक तो बनता है ना, अच्छा सा नाइस सॉन्ग, यू लाइक सॉन्ग ऑब्वियसली. तो हम थोड़ी सी हमारी ब्रेक भी हो जाएगी, तो एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है. तब तक आप हमें ज्वाइन कर लें, आपके अपने फायदे के लिए है, कुछ भी इस वक्त टाइम है. और जो एंड पे आपके लिए हम एक बहुत ही एक अगेन सरप्राइज रखा है और आप उसको सुन के बहुत खुश होंगे, तो वो क्या है उसके लिए मुंतजिर रहिए, सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम और एक खूबसूरत सा नगमा जो है वो हम सुनते हैं.

0: जी शाजिया जी बिल्कुल, आपको मज़े सामीन इकराम पता है कि शाजिया को हमने ज्वाइन किया हुआ है ब्रॉडफ्रेशन रेडियो 1413 AM पर, और आप सब बड़े मुझे लगता है दिलचस्पी से, बड़ी खामोशी से हमारा प्रोग्राम जो है वो समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। तो जी शाजिया को अभी हमने जो इनवाइट किया है अभी तक, मैंने सोचा कि मेरे बहुत से जो लिसनर्स होते हैं, हमारी फीडबैक भी आती है, मेरा उनसे मिलना भी होता है, तो वो यही कहीं शिकवा ना कर बैठे हमेशा की तरह कि जी आप ये इंग्लिश प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, किसी को भी हम इधर उधर नहीं हिलने देंगे, उर्दू पे भी आ जाते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, उर्दू बोलें आप, इंग्लिश बोलें देखें, और पंजाबी बोलें, किसी के ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो इस वक्त शाजिया से भी मैं ये एक किस्म का पर्सनल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारी फीमेल जो हैं, हमारी विमेन जो हैं, वो एक काम कर रही हैं बाहर के बिजनेस जो हैं उन्होंने संभाला हुआ है, और इसके अलावा वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो शाजिया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका बिजनेस माशाल्लाह इतना ज्यादा एनहांस्ड बिजनेस है, और इतना माशाल्लाह ये फैल चुका है आपका बिजनेस, और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी अनथक डे एंड नाइट मेहनत है इसमें, और आपने हार्ड वर्क किया, और मैं खुद आपको देख रही हूँ शुरू से कि इस वेरी हार्ड वर्किंग, यू नो मैं फील करती हूँ कि आप बहुत मेहनत से इस मुकाम तक अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाया, विच इज वेरी गुड। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने आपके माशाल्लाह बच्चे हैं?
1: 3 बच्चे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर आपको घर के काम भी करने पड़ते होंगे और बिजनेस, तो कैसे इन दोनों में बैलेंस आप करती हैं, कई मुश्किल कैसे पेश आती है?
1: अब मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम काम करती हूँ। पहले तो बहुत मुश्किल था, पहले बिजनेस को ग्रो कर रही थी, सीख भी रही थी और एजुकेशन भी एडवांस कर रही थी, अपनी नॉलेज एडवांस कर रही थी। तो बच्चे भी छोटे थे, बहुत मुश्किल था बैलेंस करना, घर को संभालना, कुकिंग करना, और फिर काम का और बिजनेस का स्ट्रेस। फिर मैं सिंगल मम भी थी, तो फिर उस वक्त मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैनेज करना, बिल्स को भी देखना। तो अल्लाह के करम
0: से माशाल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह गुड गुड।
1: अब स्टाफ रखा हुआ है तो मेरे लिए काफी इजी हो गया।
0: माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बात है। और मज़े सामीन इकराम, हमारी गुड लक है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज शाजिया को हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है, और बेहतरीन किस्म की वेरी इंफॉर्मेटिव जो एक टॉक है, और हमें जरूरत है स्पेशली स्किन से। एक दफा फिर मैं आपको स्किन की तरफ लेके आती हूँ कि ये हमारी खवातीन का इसमें फूड जो है, हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है, हम अल्लम गल्लम जिसे कहते हैं, जो भी हाथ आया खा गए, या जंक फूड का इसके साथ क्या ताल्लुक है कि हमारी ये स्किन के ऊपर अफेक्ट करती है, और क्या कोई डाइट, बैलेंस्ड डाइट जो है वो हमारी होनी चाहिए, पानी जो है वो ज्यादा इनटेक करना चाहिए, और इस सिलसिले में स्पेशली हम जो है ख्वातीन घर में इतना ख्याल नहीं रखती खाने पीने का, तो अपनी स्किन को ज्यादा ग्लो, और जब हम कहीं जाना होता है तो फिर कहती है हम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आए। ये एक इतनी मैं खुद महसूस करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पहले बहुत ऐसे करती थी, फिर मैं अब कुछ कुछ हद तक, हालांकि भाई हमारे को इतने भी बड़ी फैमिली के 2 बच्चों के साथ मैं मैनेज ना कर सकी, तो फिर मैंने फील किया है कि ओवरऑल ऐसा ही है। हम विमेन जो थी, मैं फ्रेंडली मतलब फ्रेंड्स को देखूं, फैमिली को देखूं, तो वो जो हाथ में आया हम खा लिया, बस पेट भरना है। तो इसमें प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें कि कैसी फूड हमारी होनी चाहिए और टाइमिंग फूड का क्या होना चाहिए, द बेस्ट फूड फॉर स्किन स्पेशली।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं।
0: ओके ओके।
1: एडवाइस जो मेरी समझ में
0: आपकी जो शोबे से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। स्किन जो है लिविंग ऑर्गन है, उसको फीड करना बहुत जरूरी है, ये भूल जाते हैं, भूल जाते हैं सब लोग। और सेल्स जो है, हम एजिंग की तरफ आते हैं तो हमारे सेल्स जो है डिमिनिश हो जाते हैं, उनको अच्छा करना होता है, हमारी कोलेजन जो है नीचे जाती है, तो उसको फीड करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो फूड बैलेंस रखना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, पानी बहुत जरूरी है. अगर स्किन को पानी नहीं मिलेगा, आप इस तरह समझें कि बॉडी में ना वॉशिंग मशीन में वही गंदा पानी चल रहा है.
0: बिल्कुल सही.
1: तो उसमें फ्रेश पानी आएगा, टॉक्सिन्स भी निकलेंगे बॉडी में से, तो अच्छा फ्रेश पानी आएगा तो सेल्स को भी पानी मिलेगा,
0: बिल्कुल,
1: तो अच्छा फंक्शन करेंगे.
0: एग्जैक्टली.
1: सो यू हैव टू फीड योर स्किन बेसिकली. सो गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट, एक्सरसाइज टू गेट योर ब्लड फ्लोइंग इज वेरी वेरी important.
0: Very important. I agree with this. It's entirely, absolutely true. SPF तो वो तो खैर अभी कभी भी मिस नहीं होगा. मैं यहाँ पे बैठी, मेरा ख्याल है कि हम सभी women especially बहुत इसे इस बात से एग्री करेंगी इंशाल्लाह, और आइंदा से अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखेंगे. ये नहीं होता कि मैंने वैसे ये आदत छोड़ दी है, आपस की बात है कि अब मैं ज़्यादा स्किन के ऊपर फोकस्ड होती हूँ कि अगर स्किन अच्छी है, हमारी ग्लोइंग स्किन है, तो लेस इज मोर के. लेकिन फिर भी कभी कभी कभी कभी हम कर जाते हैं. नेचुरल ब्यूटी
1: और मेकअप जो है हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं.
0: बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो. अच्छा, एक्सरसाइज जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि स्पेशली क्योंकि मैं खुद जिन चीज़ों से भागती हूँ, दौड़ती हूँ ना, तो मैंने कहा जरा कुछ मेरी भी, और हमेशा मैं प्रोग्राम के साथ साथ अपनी ज़्यादा इसलाह करती हूँ कि और फील करती हूँ कि बेहतर खुद के ऊपर जो है ना असरात मुरतब होते हैं, हम पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे होते, तो क्यों ना प्रोफेशन ऐसा हो कि जो हमें बेहतरी की तरफ लेके जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बहुत अच्छा फील करती, तो इसलिए एक्सरसाइज लाइक आजकल कहते हैं कि जी आप वॉक की बजाय लाइक एक सर्टेन एज होती है कि आप बहुत ज्यादा वॉक कर सकते हैं, और फिर 30+ 40+ कह लेते हैं, जो 50+ पे भी चले जाते हैं, तो फिर वो जो एक यहाँ पे मेरा वो मेनोपॉज वाला भी क्वेश्चन आएगा, उसको मैं अभी एक साइड पे रखती हूँ. तो हम क्या एज के वजह से अवॉइड करती हैं विमेन स्पेशली कि बस चलना ना पड़े, हमारी सेहत भी अच्छी हो, ब्यूटिफुल स्किन हो, क्या वॉक एक्सरसाइज का इससे कैसा
1: बहुत जरूरी है?
0: तालुक
1: so, जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो विमेन्स में ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, तो बहुत जरूरी होता है कि ना ज्यादा फिर आप वेट लिफ्टिंग भी करें, और बोन भी यू लूज बोन मास, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट डूइंग वेट्स.
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू.
1: वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ टू कीप दैट ब्लड.
0: एक्सरसाइज एंड वॉक इज डिफरेंट,
1: यू या बट वॉकिंग इज एक्सरसाइज. सो वॉकिंग एवरी डे इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज.
0: Exactly.
1: Nobody should have an excuse for not doing that.
0: Obviously. Unless
1: they obviously physically can't. But yes, absolutely.
0: Very interesting.
1: It's a very good activity to do in every week for everybody.
0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब हमारा सिलसिला चल रहा है. अभी घड़ी की तरफ मेरी फिर गई है, शुक्र है मैं थोड़ा सा ब्रेक का ख्याल रखने लग गई हूँ. अदरवाइज एक्साइटमेंट भी है और बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी जॉली, इतनी प्रिटी, माशाल्लाह हमारे साथ पर्सनालिटी. और मुझे तो देखे होने भी चाहिए, एक खूबसूरत चीज़ है, अच्छी चीज़ है. हमें क्या कबाहत है या आर इस चीज़ में महसूस करते हैं कि उसको हम लाइक ना करें, भाई मैं तो लाइक करती हूँ. लग रहा है इतनी जॉली, इतनी प्रिटी, माशाल्लाह हमारे साथ पर्सनालिटी. और मुझे तो देखे होने भी चाहिए, एक खूबसूरत चीज़ है, अच्छी चीज़ है. हमें क्या कबाहत है या आर

0: is being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
5: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
4: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
4: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
6: safewayrider.co.uk।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: जी सामईन इकराम, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर हमारा प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प सा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और लास्ट बिट में हम शामिल हो चुके हैं कि बस अभी प्रोग्राम जो है इख्तितामी मराहल को छूने जा रहा है और डिस्क्लोज करने वाले हैं हम आपके लिए एक बड़ा बिग बैंग जी किस्म का धमाका खेज सरप्राइज, और उसके लिए आप रेडी रहें, और स्पेशली अगर मर्द हैं तो वो खुश हो जाएं कि उनकी बेगमात जो हैं वो ऐसी जगह पे जाएंगी जहां पे उनको डिस्काउंट बहुत गुड मिलने वाला है, और ये सारा क्रेडिट ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM को जाता है। हमारी वेबसाइट आपको पता है bradfordasianradio.co.uk है, और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। शाजिया हमारे साथ है, और इतना तो हक बनता है कि हमारे पास इतनी क्यूट सी गेस्ट आई हुई हैं और इतनी खूबसूरत जो हैं स्किन से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर रही हैं और ख्वातीन को बड़ा एक्सपर्ट बना रही हैं। तो स्पेशली देखें गई, मैं आपने कहा कि ख्वातीन, तो मैं ख्वातीन के हवाले से बात कर लेती हूँ, तो बाकी सबका हक है।

बच्चे बूढ़े बड़े सबका हक है कि ब्यूटीफुल नजर आना. तो ये सॉन्ग जो है ये शाजिया डिजर्व्स फॉर दैट. चलें अब हम शाजिया के लिए ये एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी तरफ से समीन इकराम और मैं अपनी तरफ से ये डेडिकेट करती हूँ.

0: जी वाज़ सामीन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1413 एएम पर आयशा अख्तर के संग हमारी मेहमान शाजिया सवर हमारे साथ हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हमारी वेबसाइट brafreshinradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। अभी आपको पता है कि प्रोग्राम जो है हमारा इख्तिताम पज़ीर होने को है। इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो, तो एक बार फिर हम शाजिया की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आज आप जो हैं बिलखसूस यहाँ पे ब्रफरेशन रेडियो जो हमारा चैनल है रेडियो, इसके ऊपर आप आई हैं 1413 AM पर, तो आप कोई गुड न्यूज़ हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए और एक बिग सरप्राइज मैंने कहा था कि और इनके लिए होगा कि वो भरपूर फ़ायदा उठाएं, इस्तेफादा हासिल करें कि आपकी जो मेहनत है मैंने देखे हैं, माशाल्लाह आपके जितने भी क्लाइंट्स भी देखे हैं, आपका काम देखा, वेरी नाइस, वेरी गुड और बहुत माशाल्लाह तरक्की की हुई है। मजीद अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे जी, आमीन, आपको हम सबको दे। और बिज़नेस ये मैं भी इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि एक खातून के लिए बिज़नेस चलाना, घर को मेंटेन करना, बच्चों को करना, और स्पेशली व्हेन शी इज़ अ सिंगल यू नो मदर, तो उसके लिए बहुत कुछ जो है वो हमें देखना और सुनना भी पड़ता है, बहुत सोसाइटी को फेस करना होता है, और फिर इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को मेंटेन रखना और अपने आप को स्टिल यंग रखना, ये बहुत कमाल का काम है जी। मेरे बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स जो हैं आपके लिए हैं, माशाल्लाह, थैंक यू। और आप बताएं अब कि हमारे रेडियो के लिए आप जो हमारी रेडियो लिसनर्स हैं उनके लिए क्या आप सरप्राइज जो है देना चाहेंगी और कैसे वो इन सारी चीजों से फायदा उठाए आपकी।
1: सो एनी ऑफ योर लिसनर्स इफ दे मेंशन द ब्रफर्ड एशियन रेडियो और योर नेम आयशा अख्तर, दे विल गेट हर फ्री स्किन एनालिसिस स्कैन, फ्री कंसल्टेशन, एंड दे विल गेट 20% ऑफ देयर फर्स्ट ट्रीटमेंट विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी, बहुत।
1: Also, they would like to follow us on Skin Architect UK on Instagram or Skin Architect on TikTok.
0: Wow, beautiful जी, बहुत ही थैंक यू आपका, आपने हमें इतना मान दिया और यहाँ पे आने का भी बहुत शुक्रिया है। तो वैसे वो सॉन्ग अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा सुन लेते हैं और उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं और अभी हम आपका साथ जो है मजीद थोड़ा सा लें और थोड़ा सा और आपका वेरी प्रेशियस टाइम जो है, वेरी एक्सपेंसिव टाइम, उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन रखें। तो आइए चलते हैं खूबसूरत से गीत की तरफ और फिर शाजिया की तरफ हम बढ़ेंगे जी।

0: retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर,
8: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए और खासतौर पर वो अहबाब जो हमारे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

आइए हमेशा की तरह हस्ब रिवायत एक हसीन गीत से हम आगाज करेंगे। गजल उसने छेड़ी का एक बार फिर हम दावत दे दें हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी हिस्से में सुन रहे हैं और तशरीफ लाना चाहें। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। हस्ब रिवायत आगाज होगा एक हसीन गीत के तोहफे से जिसे हम किया करते हैं अपने इन तमाम अहबाब, चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले लिस्नर्स और व्यूअर्स के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत तौकीर बढ़ाती है। साथ ही साथ ये गीत हम किया करते हैं अपने नादीदा लिस्नर्स के नाम, कसीर तादाद में मौजूद है हमारे हमरा जो दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुन रहे हैं। आप सबको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबकी नजर करता हूँ। ये तोहफा आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास। आदाब उन अहबाब की खिदमत में जिनकी तशरीफ याबरी हमारी बज़्म में हो चुकी है। हम आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे हमराह मौजूद हैं हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं से रियासत साहब, वेकफील्ड से वकार मियां जो रात देर गए अपने अहल खाना के हमराह वेल से वापस आए और कहते हैं आज मैं घर में ही हूँ और पूरा प्रोग्राम आपका सुनूंगा, तबीयत भी अब मेरी बेहतर महसूस हो रही है, थकन थी मेरा ख्याल। तशरीफ लाई है सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से और आज हमारा जो सेगमेंट है एक शायर एक गीत दो फनकार, वो सेलेक्ट किया है हमारी सुमेरा बिटिया और उनकी बस 14 कजन्स ने मिलकर। हम जरूर से शामिल प्रोग्राम करेंगे आपका मुंतखब गीत। रियाज साहब हमारे हमराह मौजूद हैं, आप तशरीफ लाए हैं ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से। डॉक्टर माहरुख साहब मौजूद हैं ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से। भगत सिंह साहब तशरीफ ला चुके हैं, अभी चंद हमें पहले उनसे बात हुई, लीड्स में वो मौजूद हैं और कह रहे हैं यहां पे भी भाई बहुत बारिश बरस रही है। अच्छा, चौधरी रुखसार अहमद साहब मानचेस्टर के सनती शहर से तशरीफ ला चुके हैं एक हसीन फूलों के गुलदस्ते के साथ, जिसे मैंने यहां लेफ्ट हैंड साइड पर सजा दिया है और जिसकी महक ने और उनकी मोहब्बत की चाहत की महक ने इन फूलों में हमारे पूरे स्टूडियो को महका दिया है। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। पेज पे अभी तक तशरीफ नहीं लाए हैं लेकिन मुझे मैसेज उनका मिला है व्हाट्सएप पे और आप हैं परदेसी मजीद साहब। मैंने आपको बताया था कि इन्हें शदीद बुखार था कल, आज भी तबीयत निस्बतन बेहतर है लेकिन बुखार जो है उनका वो अभी चल रहा है और खांसी का भी सिलसिला जारी है और उन्हें बहुत फिक्र होती है। शेयर नहीं किया किसी ने, लाइक नहीं किया। अरे भाई नहीं कीजिए फिक्र, आप अपनी जान की फिक्र कीजिए। मैं खुद ही रिक्वेस्ट करता कभी किसी से कि शेयर करें लाइक करें, जो करना है जिनको वो करेंगे, जिन्हें पसंद है उन्हें पसंद है।

0: तो आप बिल्कुल कतई इस बात की फिक्र नहीं करें, जो पसंद करते हैं वो बगैर कहे ये काम करते हैं, शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। आपको अपना वजन कम करने की जरूरत नहीं है इसकी फिक्र करके, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए। मैंने आपको बताया था कि ये मौसमी बुखार लगता है, मुझे यहाँ इतने सात समंदर पार बैठकर मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन अंदाजा है मेरा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जिससे भी गुफ्तगू करो तो खांसी और बुखार का कोई वायरस आया हुआ होगा या कहीं बाहर से आपने कैच किया है। बहरहाल वही पैरासीटामॉल 4 घंटे के बाद, अगर बुखार अभी तक है 2 पैरासीटामॉल खाइए बस, इंशाल्लाह अफाका होगा। कमर्शियल के बाद हम आपको हरेसवील की हसीन फजाओं में लिए चलेंगे, जहां हमारे रियासत साहब अपने अहले खाना के हमराह मौजूद हैं और प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम सब घर पर ही हैं और गीत जो उन्होंने पसंद किया वो गीत मेरे भी दिल के बहुत करीब है। आपको पता है कि हमारे रियासत साहब जो हैं शहदाई हैं, दीवाने हैं खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफिरत फरमाए। वो आवाज़ ही ऐसी सहरंगेज और दिलों में उतर जाने वाली आवाज़ के मालिक थे कि अगर आप इस कदर शहदाई हैं तो इसमें हमें कोई शक नहीं कि आपकी पसंद बहुत आला है। जिन अहबाब के मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। गो अभी पेज पे नहीं आए हैं क्योंकि मैसेज उनका मुझे मिल गया है, परदेसी मजीद साहब की जानिब से भी तमाम सामईन नाज़रीन, और वो जो लिखते हैं पैगाम वो भी मैं पढ़ लूँगा, मुझे तो अब ज़बानी याद हो गया है, मगर पहले इनसे मिलते हैं।
1: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.

0: जाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
1: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
1: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
3: safewayrider.co.uk।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
5: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
5: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारे वो दोस्त अहबाब और सामईन और नाज़रीन जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर या वेल्स में सुन रहे हैं, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। और अब हम चल रहे हैं हस्बे वादा आपको लेकर ये अपने हर्दफील की हसीन पहाड़ियों, हरी भरी पहाड़ियों और खुले मैदान जहाँ तक निगाह डालें निगाह में अजीब सा कैफ आ जाता है, जहाँ मौजूद हैं रियासत साहब और उनके अहले खाना। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब वक्त हुआ है कि हम आपको लिए चलें वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं वकार मियां अपने अहले खाना के हमरा। अभी अभी खाने से फारिग हुए हैं और ग्रीन टी पी रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कहते हैं आज का ये गीत मेरे बच्चों की पसंद का है। वो तो गीत जब आपने बताया था मैं समझ ही गया था कि ये यकीनन या आपकी बेगम की पसंद का होगा या बच्चों की पसंद का होगा। बहुत खूबसूरत गीत है, आपके बच्चों की पसंद बहुत आला है, जैसे वो खुद आला है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्स अमान में रखे और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। पसंद लेकर हाजिर हूँ, कबूल कीजिए। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे मैनचेस्टर के सनती शहर और पेश करेंगे तोहफा चौधरी रुखसार अहमद साहब का। तो पहले चलते हैं ये अपने वेकफील्ड। वकार मियां जीते रहिए।

भाई वाह वाह वाह वाह। प्यारे बच्चों, आपकी पसंद लाजवाब थी। अंकल को भी इनकी आवाज बहुत पसंद है। ये एक नई खूबसूरत आवाज बॉलीवुड में आई है और नाम है इनका पेपन, और बहुत खूबसूरत गाते हैं और आपकी पसंद की हम दाद देते हैं। जीते रहिए, अल्लाह आपके माँ बाप का साया आपके सर पर सलामत रखे। खूब पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करो और अच्छे इंसान बनो। और अब हम चलते हैं मैनचेस्टर के सनती शहर, जहाँ मौजूद हैं हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर, जिनका भेजा हुआ गुलदस्ता हमारी स्टूडियो में महक रहा है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ चौधरी रुखसार अहमद साहब का। उनका तोहफा, उनकी नज़र करते हैं, वो मेरी पसंद के गीत सुनते हैं। और ये गीत जो मैंने मुंतखब किया है, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, तो अपने खूबसूरत लिसनर के नाम इसे ही कर रहा हूँ। लीजिए, हाजिर है, कबूल कीजिए।

और दोस्तों ये तोहफा था हमारे रुखसार भाई के लिए जो मैनचेस्टर के सनती शहर में अपने मसूफियात के बावजूद वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिज्जो अमान में रखे। हमारी ढेरों दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और अब हम घड़ी की जानिब देख रहे हैं। भगत सिंह साहब ने गीत सुनना चाहा है, मैं देख लूं कितनी देर का है, अगर वो मुमकिन हुआ तो अभी मैं शामिल प्रोग्राम करूंगा। बसूरत दीगर आपको हमारे सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार, जिसे आज गीत को मुंतखब किया है हमारी बातचीत खाने की रानी सुमैरा बिटिया और उनकी 14 कजन्स ने।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। भगत सिंह साहब, मैं गाना देख रहा था कि उसका ड्यूरेशन इतना है कि आपको हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बिल्कुल अभी वक्त है हमारे पास इतना। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका मोहब्बत भरा सलाम हमने अपने तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दिया है। जिस मोहब्बत से आप आते हैं ये हमारे लिए काबिले सद एहतराम है। जीते रहिए, आपका तोहफा।

0: City Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। हमारे श्रोते मुजाहिद और नादीदा लिसनर हमारी प्रोग्राम की जीनत और तकीर बढ़ाने के लिए हमारे हमराह दुनिया के चार कोनों में मौजूद हैं। वक्त हुआ है आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज का जो ये गीत है हमारी बावर्ची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमैरा ने और उनकी 14 कजन्स ने मिलकर, इसका मकसद है गीत बहुत भारी है, 15 लोगों ने मिलकर उठाया, मुंतखब किया है आज के सेगमेंट एक शायर एक गीत और दो फनकार के लिए। आज जो गीत मुंतखब किया है हमारी बिटिया ने वो कुछ यूं है कि नाम है, गीत के बोल हैं सैयारा, फिल्म का नाम भी यही है, ये 2025 की फिल्म है और गीत के बोल तहरीर किए हैं, बहुत ही मकबूल हो रहे हैं उनके लिखे हुए गीत बॉलीवुड में और वो हैं इरशाद कामिल, नौजवान शायर हैं, उनके लिखे हुए जो गीत हैं वो मकबूलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो गीत लिख रहे हैं मकबूल हो रहा है और मौसीकी इसकी तरतीब दी है फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और तनिष्क बागची ने।

सो दोस्तों, आज का सेगमेंट हमारी प्यारी सी बिटिया सुमैरा और उनकी 14 कजन्स का मुंतखब किया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म सैयारा का ये गीत है और फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और गीत के बोल तहरीर किए हैं इरशाद कामिल ने, मौसीकी फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी और दिनेश बख्ती की है। तीन लोगों ने मिलकर मगर बहुत खूबसूरत गीत तख्लीक किया है। भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है, और पसंद भी किसकी है, सुमैरा बिटिया विराट 43 से और उनकी प्यारी प्यारी कजन्स की। आवाज का जादू जगाया है इसमें जिन दो फनकारों ने, तो आइए पहले फनकार से मिलते हैं। याद रहे फिल्म सैयारा 2025 की और गीत के बोल इरशाद कामिल, मौसीकी खुद वो सिंगर जिसकी आवाज अभी आप सुनेंगे, फहीम अब्दुल्ला। तो आइए आज का एक शायर गीत और दो फनकार का पहला फनकार सुनते हैं, फहीम अब्दुल्ला।

और दोस्तों अभी अभी तशरीफ लाई है हसीन जोड़ी रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा की, और आप सबके लिए मोहब्बत भरा सलाम प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा लाए हैं। ये हसीन जोड़ी कराची पाकिस्तान से हमारे हमराह मौजूद है। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आप यकीनन रिजवान रिजवी साहब और अमरीन इस सेगमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सादा सी बात है, कोई ऐसा गीत मुंतखब करना है जो मकबूल भी हैं और दो आवाज़ों में हैं, बस इतनी सी बात है। कुछ नहीं करना होगा आपको, हल बैल नहीं जोतने। और दोस्तों ये जो आज का हमारा सेगमेंट है, एक शायर एक गीत दो फनकार, आज की फिल्म है सैयारा 2005 की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और मौसीकी फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और तनिष्क बगीची की है। तीन लोगों ने मिलकर इसकी गीत को सजाया है अपने खूबसूरत ख्यालात से। और अब वक्त हुआ है, हम चल रहे हैं उस खूबसूरत आवाज़ की जानिब, दूसरे फनकार की, जिसे दुनिया श्रिया घोषाल के नाम से जानती है। और आप यकीन करें कि पहली मर्तबा लता मंगेशकर के जाने के बाद बॉलीवुड के जो करता धरता हैं उनका कहना है कि एक ऐसी हसीन खूबसूरत आवाज़ ऊपर वाले ने भेज दी है जिसे लता मंगेशकर की आवाज़ का नेमुल बदल करार दिया जा रहा है। और कहते हैं कि इन्हें अभी से लोगों ने मेलोडी क्वीन कहना शुरू कर दिया है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं। और वैसे भी ये बहुत बड़ी फैन हैं लता मंगेशकर की। तो आइए चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं खुशामदीद कह लूँ परदेसी मजीद साहब को। मैं जब उनका मैसेज आया था तो मैंने खुशामदीद कहा था। बुखार है बहुत शदीद लेकिन तशरीफ लाए हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम, नवीद साहब को, चौधरी रुखसार अहमद साहब को, रिजवान साहब को और फिर लिखा है चौधरी। अच्छा, इनसे खास बात है यार, क्या चौधरी रुखसार अहमद से डबल दोस्ती है? चौधरी रुखसार अहमद साहब को भी मेरा सलाम और ढेरों दुआएं और आपके लिए खुसूसी दुआएं। अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे उम्मीद है कि कल की निस्बत आज आपकी तबीयत बेहतर होगी। हम आपको गजल उसने शेरी में खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम चलते हैं, मैं जिक्र कर रहा था श्रिया घोषाल का, जिन्हें अभी से लोगों ने बहुत खूबसूरत टाइटल से नवाजा है। कोई बुलबुल कहता है हिंदुस्तान की और कोई मेलोडी क्वीन कहकर इन्हें मुखातिब कर रहा है। और इनकी आवाज़ ने साबित कर दिया कि इनके अंदर वो क्वालिटी वाकई मौजूद है जो लता जी की आवाज़ में थी। चलते हैं, बे इंतहा फेवरेट इनकी पसंदीदा फनकारा थी और लता को तो जब गाती हैं तो आप यकीन करें ऐसा आंखें मीच के सुने तो लगता है लता गा रही हैं। मुझे इनका प्रोग्राम सुनने का इत्तेफाक हुआ लाइव, वाह वाह क्या आवाज़ है। तो आइए चलते हैं सेगमेंट के दूसरे पड़ाव पर। फनकार आप सुन चुके हैं, एक फनकार फहीम अब्दुल्ला, और अब आ रही हैं श्रिया घोषाल उसी गीत को लेकर।

और दोस्तों अभी आप हमारा सेगमेंट सुन रहे थे, एक शायर एक गीत दो फनकार। आज की फिल्म थी सैयारा, गीत मुंतखब किया था हमारी प्यारी से बिटिया सुमेरा ने ब्रैडफोर्ड 3 से। गीत क्योंकि बहुत भारी था तो 14 कजन्स की मदद भी ली गई। जीती रहो सुमेरा। और साथ ही साथ आप भी अगर इस सेगमेंट में शामिल होना चाहें तो हमें, जैसे कि रिजवान ने अभी पूछा था, बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई ऐसा गीत जो मेरे सेगमेंट में पहले से शामिल ना हुआ हो ये भी जहन में रखें, और उसे दो फनकारों ने गाया हो और गीत भी मकबूल हुआ हो, ये भी कंडीशन है। बहरहाल अभी जो हम चल रहे हैं आपको लेकर कराची पाकिस्तान में मौजूद रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा के भेजे हुए उस तोहफे की जानिब जो उन्होंने अदब के शजाइयों और शेर के मतवालों के नाम भेजा है। बहुत खूबसूरत इंतखाब है। नौजवान शायर उमर नजमी के इस खूबसूरत कलाम को मुंतखब किया है रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने, आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम। और वो कुछ यूं है, सबसे पहले तो ये कि रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, नजर बद से बचाए और हमेशा अपने इज्जत-ओ-मान में रखे। बहुत खूबसूरत आप दोनों का इंतखाब है। वैसे तो आप एक दूसरे का भी तो इंतखाब है ना, टचवुड माशाल्लाह। जो तोहफा उन्होंने अदब के शजाइयों और शेर के मतवालों के लिए भेजा है वो कुछ यूं है कि मैं बुरुश छोड़ चुका आखिरी तस्वीर के बाद, मैं बुरुश छोड़ चुका आखिरी तस्वीर के बाद, मुझसे कुछ बिन आहा, क्या खूबसूरत इंतखाब है यार, उमर बहुत अच्छे कहते हैं। मैं बुरुश छोड़ चुका आखिरी तस्वीर के बाद, मुझसे कुछ बन नहीं पाया तेरी तस्वीर के बाद, मुझसे कुछ बन नहीं पाया तेरी तस्वीर के बाद, मुश्तरक दोस्त भी छूटे हैं तुझे छोड़ने पर, मुश्तरक दोस्त भी छूटे हैं तुझे छोड़ने पर, यानी दीवार बनानी पड़ी तस्वीर के बाद। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मुश्तरक दोस्त भी छूटे हैं तुझे छोड़ने पर, यानी दीवार बनानी पड़ी तस्वीर के बाद, यार तस्वीर में तन्हा हूं मगर लोग मिले, यार तस्वीर में तन्हा हूं मगर लोग मिले, कई तस्वीर से पहले कई तस्वीर के बाद, यार तस्वीर में तन्हा हूं मगर लोग मिले, कई तस्वीर से पहले कई तस्वीर के बाद, दूसरा इश्क मैसर है मगर करता नहीं। बहुत अकलमंद हो यार उमर। दूसरा इश्क मैसर है मगर करता नहीं, कौन देखेगा पुरानी नई तस्वीर के साथ, कौन देखेगा पुरानी नई तस्वीर के साथ, भेज देता हूं मगर पहले बता दूं तुझको, भेज देता हूं मगर पहले बता दूं तुझको, मुझसे मिलता नहीं कोई मेरी तस्वीर के बाद, भेज देता हूं मगर पहले बता दूं तुझको, मुझसे मिलता नहीं कोई मेरी तस्वीर के बाद, और खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा। क्या नई सोच नई फिक्र है, क्या बात है, खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा, एक अदद जंग लगी कील थी तस्वीर के बाद। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या नई सोच नई फिक्र है, वाह वाह वाह वाह, खुश्क दीवार में सीलन का सबब क्या होगा, एक अदद जंग लगी कील थी तस्वीर के बाद। बहुत खूबसूरत इंतखाब, बहुत हसीन इंतखाब और
بہت خوش نصیب ہے ہمارے ادب کے شیدائی اور شعر کے متوالے کہ آپ جیسے احباب بھی ہماری بزم میں موجود ہیں جو شعر کی پرکھ رکھتے ہیں. میں بے انتہا شکر گزار ہوں جناب رضوان رضوی اور امرین زہرا آپ کا, اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ بڑھ رہا ہوں کمرشل کے وقفے کی جانب. کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے مجھے ایک دم یاد آ گیا, محمد ایوب چوہان صاحب ہمارے سادہ دلکش اور معصوم شخصیت کے مالک لسنر تشریف لا چکے ہیں اولڈہم سے, اور ایک گیت سننا چاہتے ہیں جسے ہم یقیناً اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایوب چوہان صاحب خوش رہو, آباد رہو, ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب.

0: Good Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडो
6: को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।

0: 88
1: Telephone 01274731555 Mangla Catering Services.UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
1: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
0: बालियां अंगूठियां और हार
1: जो दुल्हन करे सिंगार
0: आज ही मामू काके की दुकान
1: खालिस सोने की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
0: आपकी शान
1: हमारी आन
0: क्वालिटी की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
3: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days पल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: और दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको ओल्डहम लेकर चलें और अय्यूब चौहान साहब का तोहफा उनकी नज़र करें जो हमारे बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं, क्यों ना हम आपकी मुलाकात बंडे से आए हुए अपने खूबसूरत मेहमान से करवा दें। हाँ हाँ, सही पहचाना, शकील भाई का जिक्र हो रहा है। बहुत पसंद करते हैं आप लोग, अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए। मैं तो कह रहा था भाई, नज़र उतारते रहा करो यार, आपको बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। शकील भाई, मैं कह रहा था जरा नज़र उतरवाते रहा करो अपनी।
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है। आप सुनाएं कैसे
0: हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सुनने वालों को मैं अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: खालिद अली मीर साहब हैं, इनकी अलिया है, नवीद भाई हैं, अय्यूब भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब है, रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, तारिक सुल्फी है, आशमी ओसवाल है, परवेज साहब है, मजीद भाई, अला शफिया नकवी साहब, शाह साहब, सबको मैं अस्सलामुअलैकुम।
0: आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा।
1: तो एक गजल है, ये बशीर अहमद शहीद इनका नाम है।
0: जी जी, अता कीजिए।
1: कहते हैं, दिल के हर दाग को सीने से लगाए रखिए।
0: दिल के हर दाग को सीने से लगाए रखिए।
1: खाना दिल में ये फानूस जलाए रखिए।
0: वाह वाह वाह वाह, खाने दिल में ये फानी जलाए रखिए।
1: शुक्रिया। दिल के हर दाग को सीने से लगाए रखिए, खाने दिल में ये फानू जलाए रखिए।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: जिंदगी वक्त के सांचे में ढली जाती है।
0: आहा।
1: दीदा दिल को करीने से सजाए रखिए।
0: क्या खूबसूरत बात है, और क्या करीने से इसे कहा है, अता कीजिए। जिंदगी
1: जिंदगी वक्त के सांचे में
0: ढली जाती है,
1: दीदा वो दिल को करीने से
0: सजाए रखिए। वाह वाह वाह वाह।
1: शाम गम का जो फसाना था वो अब खत्म हुआ।
0: आहा, शाम गम का जो फसाना था वो अब खत्म हुआ।
1: सुबह उम्मीद का माहौल
0: बनाए रखिए। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। शाम गम का जो, अता कीजिए।
1: शाम गम का जो फसाना था वो अब खत्म हुआ।
0: आहा।
1: तो उम्मीद का माहौल बनाए रखिए।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। अपने इखलास और मोहब्बत के हक

0: வா, தாவாதே, தாங்க, வாவா.
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: सूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर। हमारी ये नशियात आपकी खिदमत में यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। जैसा कि हमने जिक्र किया था, हमारे काबिल सरदस्तराम लिसनर लैया पंजाब पाकिस्तान से नज़ीर अहमद साहब हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं और अब वक्त हुआ है उनका तोहफा उनकी नज़र करने का। वो जिस कदर मोहब्बत चाहत और प्यार के साथ सात समंदर पार से बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं, हम उनकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं और आपका तोहफा हम अभी चंद लम्हों बाद आपकी नज़र करेंगे।

0: इसी तरह आप जानते हैं कि जिस तरह जिस मोहब्बत चाहत और प्यार से नजीर साहब हमारे पास तशरीफ लाते हैं, हमारे एक और खूबसूरत लिसनर हैं परदेसी मजीद साहब खालियां गुजरात पाकिस्तान से तशरीफ लाते हैं। उनकी तबीयत शदीद नासाज है, बुखार बहुत ज्यादा तेज है, खांसी भी है और सर में दर्द भी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उनका पैगाम मुझे मिला और उन्होंने आप सब सामईन और नाज़रीन से एक दरख्वास्त की है, कबूल कीजिए।
1: भी शेयर नहीं किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हां जी चाचू जान, और सुनाए क्या हाल चाल, ठीक ठाक है ना? सब के ऐसे मेरी दुआओं की अपील है क्योंकि आज भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार भी बहुत तेज है और सर भी बहुत दर्द कर, जैसे अभी पाटने लगा। सबसे दुआओं की अपील है।
0: देखा आपने, उन्होंने जो पैगाम भेजा था, बजाय इसके कि आप शायद मेरी बात को प्रोग्राम की तरह दरगुजर कर दें, शरीर तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और सेहत आजरा नसीब फरमाए। मैं एक बात आपको बता दूं जो जेब तो नहीं देती मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुआ के लिए हाथ उठें आपके। परदेसी मजीद साहब तन्हे तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं और एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर भी रहे हैं। आप पैरालाइज्ड हैं, चल फिर नहीं पाते, बेड रिडन हैं, लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम होता है ये उनके लिए, समझ लीजिए कि उनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है, कि ये प्रोग्राम उनके लिए दवा का काम करता है। और कहते हैं कि पूरे 3 घंटे में एक एक लम्हा सुनता हूँ, अगर आपको पार्किंग नहीं मिलती और कभी देर हो जाती है आने में तो मुझे फिक्र हो जाती है कि आज मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको सेहत कामला और सेहत आजरा नसीब फरमाए। हमेशा याद रखिए, अभी मैं एक गीत आपके लिए बजाऊंगा और वो गीत उसका हर लफ्ज आपके और सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है? और आप आराम कीजिए और प्रोग्राम सुनते रहिए। रेडियो का तो फायदा यही है। हमारी बिटिया जो है वो सुमैरा ब्रेडफोर्ड 3 में, वो 3 घंटे में सारा दिन का कुकिंग जो है वो करके फारिग हो जाती है। तो आप भी आराम भी कीजिए और उसकी कुकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह आपके आराम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद अफाका हो। आपके लिए एक तोहफा मैं पेश करूंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो क्योंकि मैं लैया पंजाब पाकिस्तान में मौजूद नज़ीर अहमद साहब का तोहफा उनकी नज़र कर रहा हूँ। नज़ीर भाई, आमद का बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, अल्लाह आपको अपने दामान में रखे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास और वक्त हुआ है हमारी काबिल एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहबा हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुकी हैं, लंच ब्रेक पर हैं और अपना तोहफा, और वो तोहफा जो आप तमाम सामीन के लिए लाती हैं वो अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम। आज हजरत फैज़ अहमद फैज़ का कलाम लाई हैं कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार के। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन। देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के। क्या बात है, फैज साहब की तो बात ही आला थी। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज, मत पूछ वलवले दिले ना करदकार के। क्या खूबसूरत डॉक्टर साहब इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह। बहुत दिनों के बाद इस कदर खूबसूरत और मुरस्सा कलाम हमने लोगों तक पहुंचाया है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। डॉक्टर साहब ने जो गजल आज मुंतखब की है उस गजल से पहले मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैंने अपने रेडियो की का आगाज रेडियो पाकिस्तान कराची के प्रोग्राम बच्चों के प्रोग्राम से किया था। उस जमाने में एक प्रोग्राम सुबह आता था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे बुजुर्ग थे जिनसे मैंने बहुत कुछ बोलना सीखा, मगर प्रोग्राम का नाम याद है, सुबहदम दरवाजे खाबर खुला। उसमें हम गए हुए थे बच्चों के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ हमने एक बेइंतहा सादा दिलकश और बहुत अट्रैक्टिव खातून को देखा। सादगी से बाल उन्होंने किए हुए थे, चोटी पीछे पड़ी हुई थी, साड़ी पहने हुए थी और उनकी गजल रिकॉर्ड हो रही थी, हजरत जिगर मुरादाबादी की गजल थी। वो गजल हमने सुनी वहाँ और उनका नाम था ये सुबहदम दरवाजा खाबर खुला के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड। फाइक बाप फाइक साहब हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनके दर्जात को, मोहम्मद फाइक प्रोड्यूसर थे, वो ये प्रोग्राम पेश भी किया करते थे, बहुत खूबसूरत सदाकार भी थे। तो मोहम्मद फाइक साहब के प्रोग्राम में ये गजल रिकॉर्ड हुई थी, सुबहदम दरवाजा खाबर खुला के लिए, और पहली बार हमने देखा था इस खूबसूरत फनकारा को, क्योंकि उस जमाने में टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, फनकारों की आवाजों से उन्हें पहचाना जाता था और उन्हें देख लेना वो तो बहुत बड़ी बात थी, और हम उन खुश नसीबों में थे जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। और उस खूबसूरत फनकारा का नाम मैं आपको क्या बताऊं, बस अब तो बड़ा दिल दुखता है, दुखता है। मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको।

उनका नाम था फरीदा अली, फरीदा अली उनका नाम था, मुझे याद आ गया। तो फरीदा अली ने ये गजल उस प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड की थी। एक सेकंड होल्ड कीजिए।

0: जेएल
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
0: 01274317644
2: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
3: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
0: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
3: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
0: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
3: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY
0: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK दुल्हन वो जो पिया मन भाए
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
0: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
3: बालियां अंगूठियां और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार
3: आज ही मामू काके की दुकान
0: खालिस सोने की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
3: आपकी शान
0: हमारी आन
3: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95 ER 01274491442
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
0: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
3: safewayrider.co.uk
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
4: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
5: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंग स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
5: मैनिंगम सुपर स्टोर
6: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: दोस्तों बात हो रही थी इस गजल के हवाले से डॉक्टर साहब का मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर माहरुख साहिबा का मैंने कुर्सी सही की है जरा कि उन्होंने मुझे बताया फरीदा अली के साहबजादे राशिद खान गिटारिस्ट हैं बहुत मारूफ AR रहमान के ग्रुप में हैं और उन्होंने फिल्म जाने तू या जाने ना में बेशुमार गीत गाए हैं उस फिल्म के आज हम उसे शामिल प्रोग्राम भी करेंगे एक गीत जरूर आपको सुनवाएंगे कि इस अजीम फनकारा का फरीदा अली का बेटा किस कदर खूबसूरत आवाज का मालिक है ज़रूर हम शामिल प्रोग्राम करेंगे और अभी तो हमें शकील भाई का तोहफा भी उनकी नज़र करना है आज अभी तक हमने उनका तोहफा उनकी नज़र नहीं किया है लेकिन अभी नहीं अभी तो आपकी बात कराते हैं मुलाकात कराते हैं सादा मासूम दिल का शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान साहब से अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम सलाम रिफत भाई आप ठीक है
7: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं
8: मैं ठीक ठाक हूँ मैं फायदा भी हूँ और बहुत बोला भी हूँ
7: अरे अरे अरे कुर्बान जाऊँ
8: तो कुछ इशार सुनाऊंगा मैं आपको
7: जरूर इशारों पर
8: ऐसे में प्रोग्राम सुन रहा था सुनते मेरा मूड बन गया तो मैंने सोचा कुछ सुना देते हैं
7: जरूर इशारों पर
8: रात आंखों में डली पलकों पे जुगनू आए
7: क्या इंतखाब है क्या इंतखाब है डॉक्टर साहब का डॉक्टर बशीर बद्र
8: जी रात आंखों में डली पलकों पे जुगनू आए हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए
7: हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए वाह वाह

0: उसका दिल दिल नहीं पत्थर का कलेजा होगा।
1: उसका दिल दिल नहीं पत्थर का कलेजा होगा।
0: जिसको फूलों का हुनर आंसुओं का जादू आए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: बस घी है मेरे एहसास की में ये कैसी महक।
1: आहा।
0: कोई खुशबू मेरे लगाऊं तेरी खुशबू आए।
1: क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम है, इंतखाब है, वाह वाह वाह।
0: खूबसूरत है बहुत दुनिया के झूठे वादे।
1: खूबसूरत है बहुत दुनिया के झूठे वादे।
0: फूल कागज का लिए कांच के बाजू आए।
1: आहा।
0: उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान कहा।
1: उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया।
0: मुद्दते बाद मेरी आंखों में
1: आंसू। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। भाई वाह क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह।
0: उसने छू कर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए।
1: मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए।
0: अच्छा एक और है
1: जी, अच्छा कीजिए।
0: ये राहत तंदूरी साहब फरमा रहे हैं।
1: जी जी।
0: जिंदगी का नाम को अमारी है।
1: जिंदगी का नाम तो
0: अमारी है।
1: हाँ हाँ।
0: आखिरी सांस भी तुम्हारी है।
1: आखिरी सांस भी तुम्हारी है, वाह वाह वाह।
0: तेरी चाहत कहाँ पे ले आई।
1: तेरी चाहत कहाँ पे ले आई।
0: तुझसे मिलकर भी बेकरारी है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: मुझसे पूछे महक चमके सितारों की।
1: आहा।
0: मुझसे पूछे चमके सितारों की।
1: आहा।
0: मैंने रो रो के शब गुजारी है।
1: मैंने रो रो के शब गुजारी, वाह वाह वाह वाह।
0: आपके हाथ में लकीरें हैं।
1: आपके हाथ में लकीरें हैं,
0: वरना तकदीर तो हमारी है।
1: आय है, आपके हाथ में लकीरें हैं, वरना तकदीर तो हमारी है, भाई वाह वाह वाह वाह।
0: दिल मोरा दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो।
1: ओहे, दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो।
0: चीज मेरी नहीं तुम्हारी है,
1: वाह वाह वाह वाह। क्या जज्बा है, क्या बात है, वाह वाह। दिल मेरा तोड़ते हो लो तोड़ो, वाह वाह।
0: चीज मेरी नहीं तुम्हारी है। अच्छा ये थोड़ा सा ये प्रवीण शाकर साहब फरमाती हैं।
1: क्या कह रही हैं?
0: वो पूछता रहा और मैं उसे वजाहत न दे पाई।
1: वो पूछता रहा, मैं उसे वजाहत न दे पाई।
0: बारिश तो शब भर मेरे आंगन में बरसी थी।
1: बारिश तो शब भर मेरे आंगन में बरसी थी।
0: लेकिन मेरी आंखों का काजल तकिए पर क्यों फैला हुआ था।
1: आहा, ये आजाद नज़्म है, बहुत खूबसूरत, वाह वाह।
0: तो ठीक है जी, बस वो हर गाना तो मेरा आपने लगा दिया। वो जो आपके ओवरसीज लिस्टनर हैं ना, दूर दूर दूर सुनते हैं ना, उनके लिए भी कोई गाना लगाएंगे तो कोई खास क्या गाना लगाइएगा।
1: अच्छा जरूर जरूर, इंशाल्लाह कोई खास सा
0: है। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे कल मुलाकात।
1: अल्लाह आपको उम्र खिदरा अता फरमाए।
0: आपको मोहब्बत भरा सलाम।
1: जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। और दोस्तों मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर माहरुख साहिबा ने ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, और रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने कराची पाकिस्तान से खुसूसी दुआ की है जनाब परदेसी मजीद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामला और सेहत आजरा अता फरमाए। देखिए आपके लिए दुआएं हो रही हैं, अल्लाह आप पर हमेशा अपना करम रखेगा और अपना फजल करेगा और आपकी तबीयत इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर मायूसी को करीब न भटकने दें, इसलिए कि ये दुनियावी सहारे तो जरूरी नहीं है कि हर शख्स को मैसर हों। आप इत्तेफाक के उन लोगों में हैं जिन्हें ये कुर्बत नहीं मिल पा रही है। अल्लाह की मसलहत और मर्जी ऐसी है कि आप तने तनहा हैं और बहादुरी के साथ ज़िंदगी का मुकाबला कर रहे हैं इतने बड़े इम्तिहान में। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। लेकिन हमेशा याद रखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों।

दोस्तों, ये गीत था परदेसी मजीद साहब के लिए। और अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब ने। और इसके बाद हम आपको फरीदा अली के साहबजादे का मैंने ढूंढ निकाला है, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर माहरुख साहब ने निशानदही की थी नाम की और उनकी फिल्म की, सो वो हम आपकी नजर करेंगे। लेकिन अभी तो हम दौड़ के चल रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अपने बंदले और बंदले में शकील भाई आपका तोहफा लेकर हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South York?
7: 442
9: Pakistan Jewelers.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online.

0: जाने को जी जा रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑटोमेटिक डबल बेड, एशियन रेडियो।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ।
10: आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स।

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला,
0: क्वालिटी रेस्टोरेंट एशिया रेडियो और 1430।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 0127448877।
2: मीडियम वेव 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ यही नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं। जी हाँ, BFD एशियन रेडियो के नाम से आप हमें डेब पे भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे तमाशा गाहे आलम से, गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो धुंधलका सा कोई जैसे, जमीन से आसमां तक है ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहां तक है। करो जो बात करनी है। सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की यथा गहराइयों से खलूस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे, और यही नशात इस वक्त CV FM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही है। और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ देना चाहें, साथ निभाना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ आपकी अपनी सना खान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रंगे महफिल का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे दोस्त ने बहुत ही प्यारा सा गीत मुझे सेंड किया कि हम ये गीत अपने स्टूडियो पे लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप हमारे स्टूडियो में कॉल करें और हमें अच्छे अच्छे गीत से नाचना करते जाएं। हम आपके लिए हमेशा ही ऐसे गीत लगाते रहेंगे। तो जी सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं बेफोर्ड एजियन रेडियो 1430 AM पर। हमारा स्टूडियो का नंबर है 01274306677। और जी हाँ, अगर आप हमें वेबसाइट पे भी सुनना पसंद करते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk पर। जी हाँ, अगर आप हमें बैरूनी मुल्क से कॉल कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ यूके से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आपको अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा। याद रखिएगा हमारा कोड नंबर ज़रूर मिलाइए, 00447800599563। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा कोड जरूर मिलाएगा 00447800599563। तो आपके पेश नज़र करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गज़ल, किसी अनजान रास्ते पर मोहब्बत खो गई हमसे, किसी अनजान रास्ते पर मोहब्बत खो गई हमसे, अकेले लौट आए घर मोहब्बत खो गई हमसे, बहुत बेताब हैं ये दिल कहाँ जाए किधर जाए, बहुत बेताब हैं ये दिल कहाँ जाए किधर जाए, कहीं किस से ये हम जाकर मोहब्बत खो गई हमसे, कहीं किस से ये जाकर मोहब्बत खो गई हमसे, निगाहें देखती रहे किसी की मंतज़िर पहम, हुआ अश्कों से दामन तर मोहब्बत खो गई हमसे, उदासी छुपती है आँखों के दरमियानी जानी, पटकता है मुकद्दर सर मोहब्बत खो गई हमसे।

0: जी सामीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आपकी नज़रों ने जब से हमें देखा। बहुत ही प्यारा क्लासिक सॉन्ग था और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी सामीन, अगर आपको भी हमारे स्टूडियो में कॉल करना है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306 और अगर आप हमें 3066677 और अगर आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉल करनी है और हमारी लाइव कॉल में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा कोड नंबर जरूर मिलाइएगा। बैरून मुल्क के लिए स्पेशली है ये 00447800599563 पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सुन भी रहे होंगे वाइल यू आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें सुनना चाह रहे हैं तो www.bradfordasianradio.co.uk पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो अब आपको एक अच्छा सा शेर सुना देते हैं। अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे सबर मेरा भी कमाल रहा।
1: रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
15: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी सामिन, ब्रेक के बाद से एक बार फिर से आपको वेलकम है और इस वक्त तो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने रंगे महफिल के प्रोग्राम में। जी शायदा, आपने हमें शेफील्ड से कॉल किया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद रखा और आपने हमारे स्टूडियो पे कॉल करके एक अपनी फरमाइश का गीत बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। उसके फ़ौरन बाद ही शकील साहब, थैंक यू सो मच, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बफर एजियन रेडियो में और आपका भी गीत हम थोड़ी देर में लगा देंगे। और थैंक यू, आपने हमें याद किया। और इस वक्त आप हमारे साथ हैं, सैयद हसन साहब आपके साथ हैं, सना खान आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं बफर एजियन रेडियो 1430 AM पे। अगर आपको भी हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर।

0: ये जमीन आपको उम्मीद करती हूँ ये गीत बहुत पसंद आया होगा, और ये गीत है रुखसार साहब की फरमाइश है, दिल गलती कर बैठा तो बोल हमारा क्या होगा,
1: कफारा क्या होगा,
0: बोल कफारा क्या होगा, उसमें उसने बोला बोल हमारा क्या होगा। जी थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पे कॉल करने के लिए और अच्छा सा गीत पेश करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। अभी जो हमारी नेक्स्ट कॉलर ने जो हमें गीत की फरमाइश की है वो है तू धरती पे जाए जहाँ भी रहे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गीत बहुत पसंद आएगा।
1: इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक
0: जी, हम इसके बाद लाइव ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हमारा लाइव प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आप हमें टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव पे और हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 012-743-0667 पर।

0: mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: and online.

0: পরে সামিন আব ইস প্রোগ্রামকে দুসরে হিসেবে মে হাম আন পৌঁছে জি হ্যাঁ সামিন আব ইস প্রোগ্রামকে হাম দুসরে হিসেবে মে আন পৌঁছে ওর একবার ফির আপ সবই শুনে বালোঁ খুশ আমাদের কে হ্যাঁ ওর আপ তো জানতে হ্যাঁ কি ইস প্রোগ্রাম কাজ দুসরা হিসা হতো উসমে হামারি লাইভ কালস হতি হ্যাঁ জিসমে আপ শুনে বালে তশরিফ লাতে হ্যাঁ কালস করতে হ্যাঁ ওর ইস মহফিল কো জিনত বখশতে হ্যাঁ রৌনক বখশতে হ্যাঁ ইস বক্ত হামারে সাথ হামারি কো হোস্ট ভি মৌজুদ হ্যাঁ সানা জি আপ ভি শুনে বালোঁ সে একবার ফির জয়ন ইন হো জাইয়ে
1: জি সামি হামারে প্রোগ্রাম কাজ দুসরা হিসা স্টার্ট হো চুকা হ্যায় মে হুঁ আপকি হোস্ট সানা খান উমীদ করতি হুঁ আপকো হামারা প্রোগ্রাম বহুত রঙ্গে মহফিল আচ্ছা লগ রহা হোগা और जी हमारे लाइव कॉल का जो है वो स्टार्ट हो गया है अगर आपको हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर तो इस वक्त हमारे साथ शकील साहब मौजूद है हमारी कॉल पे
0: जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब
2: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब मोहतरम क्या हाल है ठीक है शकील साहब आप
2: जी आवाज आ रही है
0: जी जी परफेक्ट आपकी आवाज हमें आ रही है आप खैरियत से ठीक है
2: जी अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है आपकी दुआएं हैं
0: जी जी
2: तो हमारे सारा बहन को भी बहुत बहुत आदाब और सलाम अलैकुम
1: वालेकुम अस्सलाम आपको भी बहुत आदाब है
2: अली मीर साहब है अली भाई हैं चौधरी रुखसार साहब चौधरी मुजफ्फर साहब हैं इकबाल भाई हैं महबूब अलाई हैं सादिया बहन है
0: हमारे
2: और भी शफीक भाई सबको जितने सुनने वाले हैं सबको मैं तस्से अस्सलाम अलैकुम
0: वालेकुम अस्सलाम सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे
2: वालेकुम अस्सलाम तो ये शुजा फरखी है इनकी गजल है
0: शुजा फरखी जी जी इनायत कीजिए
2: मिटाने अहले हक को झूठ के लश्कर निकल आए
0: मिटाने हक को झूठ के लश्कर निकल आए
2: उजालों के मुकाबल रात के मंजर निकल आए
0: क्या कहने उजालों के मुकाबल रात के मंजर निकल आए बहुत खूब
2: हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी
0: हाँ हाँ हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी
2: के दरिया जब दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए
0: क्या कहने की दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए बहुत खूब ये शेर फिर से पढ़िएगा शकील साहब बहुत ही अच्छा
2: शुक्रिया मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था
0: मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था
2: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए
0: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए बहुत ही प्यारा शेर है वाह वाह क्या कहने
2: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की
0: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की
2: मगर मिट्टी से फूलों की जगह पत्थर निकल आए
0: क्या कहने मुझे वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा जनाब
2: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी
0: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए
0: क्या कहने लाजवाब है फिर से पढ़िएगा वाह वाह
2: नमो की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी
0: आहा
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए
0: कहते ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने उनको मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े
2: माशाल्लाह
0: जनाब
2: आखिरी शेर कहते हैं मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने
0: मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने वाह वाह की
2: आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए
0: उन्हीं की आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए क्या कहने शकील साहब वाह वाह बहुत खूब
2: एक प्रोफेसर रशीद हसरत है उनकी
0: आप अक्सर उनके सुनाया करते हैं रशीद हसरत के जी जी अच्छे होते हैं हमेशा जी जी
2: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में
0: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में
2: फूलों से दामन है खाली गर्चे हैं गुलजार में
0: बहुत अच्छे कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को
2: माशाल्लाह कहते हैं जायकों से उनके हमको कुछ नहीं है इन्हराफ सबसे मीठा फल है लेकिन सब्र सब आसमार में
0: बहुत खूब
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का और अपने घर रखें माँ बाप को आजार में
0: क्या कहने और रखें वाह वाह वाह बहुत खूब क्या कहने
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का और अपने घर रखे माँ बाप को आधार में।
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
0: हाँ हाँ, क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
2: हम दुकानदारी लगाने में फकत तकरार में।
0: बहुत खूब, बहुत
2: लगाते हैं फकत
0: तकरार में। बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
0: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
2: आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है। फिर से पढ़िए गई ये शेर।
2: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है, आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: और मुझे यहाँ ब्रेडफुट की एक लोकल शायरा थी, उनका वो शेर याद आ जाता है कि तुम जिसे रहनुमा बनाओगे वो हमारा ही नक्शेपा होगा।
2: माशाल्लाह। फिर कहते हैं, एक वफा को छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
0: एक वफा छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
2: ऐ मसवर रह गई बस एक कमी शाकार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: जिसकी मर्जी जब जहां जैसी भी मनमानी करे।
0: वाह वाह,
2: एक जरा सा तम भी कहां बाकी रहा सरकार में।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: क्या हकीकत पूछते हो जिंदगी एक जबर है।
0: क्या हकीकत पूछते हो जिंदगी एक जबर है।
2: दर्द बनकर खून बहता है तेरे फनकार का।
0: बहुत खूब बहुत खूब, शुक्रिया।
2: तो आखिरी शेर कहते हैं, वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद।
0: वाह वाह,
2: वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद, लो चला है वो भी हमको छोड़कर अगियार में।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
2: शुक्रिया। तो बड़ी मेहरबानी, टाइम
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और तशरीफ आते रहिएगा। अल्लाह हाफिज। और जी सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, हमेशा की तरह आज भी लाजवाब इंतखाब के साथ तशरीफ लाए थे। और हमेशा हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि जो भी ये लाते हैं बड़े मुंतखब कलाम के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और महफिल को चार चांद लगाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तरन भी मौजूद हैं और आप को भी हम खुश आमदेद कहते हैं। सना भी हैं, तरन भी हैं और हम सारे मिलजुल के एक आपके लिए भरपूर महफिल पेश कर रहे हैं। जरा सा तरन को भी ऑनलाइन लेके आइएगा। जी जी, तरन आप क्या सुनाओगी जरा, आपको भी हम लाइव लाते हैं ना टिकटॉक पे। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। आप खैरियत से ठीक है?
3: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे?
0: अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत सब ठीक ठाक। और जी और देखते हैं कि तरन हमें आज क्या सुनाएंगी, या फिर आप ये वाला कैमरा आप लगा लीजिए, ये वाला स्टैंड।

0: और सामिन, ये खूबसूरत गीत तो चल रहा है और चलता भी रहेगा, लेकिन उससे भी खूबसूरत हमारे सुनने वाले हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा, बा कमाल लाजवाब, बो ताला बा इज्जत, बा वकार, बा ज़ौक, बा शौक, हर दिल अज़ीज़, बहुत नफीस, बहुत लतीफ, बहुत शफीक और काबिल अज़मत, काबिल रिफ़त, नहायत काबिल रिस्पेक्ट जनाब मोहतरम हसन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और जनाब वाला, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप?
1: जी हजूर, आप कैसे हैं? सेहत तबीयत कैसी है? मजाज ग्रामी कैसे?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, सब ठीक ठाक। और आप सुनाइए, आपके मैनचेस्टर का क्या हाल है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जगह पे है और ठीक ठाक है जनाब, फिट फाट है।
0: फिट फाट है मैनचेस्टर, क्या कहने मैनचेस्टर के। सही से
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको और माशाल्लाह आपके साथ जो विराजमान हस्तियां हैं, माशाल्लाह मेरे लिए नहायत काबिले इज्जत, काबिले एहतराम और काबिले अजमत हैं मेरे लिए। और जनाबे मोहतरमा सना साहबा हैं और जनाबे मोहतरमा तरन साहबा है, उन दोनों हस्तियों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा, चाहत भरा, उल्फत भरा, तिबत भरा, नहायत मोहब्बत, नहायत चाहत और नहायत उनसे जनाब। एक पहले तो एक छोटा सा जोक लेके आया हूँ, अब सैयद राब हैदर तो है नहीं वरना उनको सुना देता, अगर जा तो सुना दूं आपको।
0: जी जी, ये इनायत इनायत कीजिए।
1: एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है?
0: फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है? अच्छा, जोक सुना रहे हैं, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है? अच्छा,
1: हस्बैंड बोलता है कि जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट होगी,
0: हाँ हाँ,
1: और तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी लाइफ फिनिश होगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त है, जबरदस्त है, अच्छा है, अच्छा है।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके जितने भी सामईन हैं सभी को अपनी फरमान में रखे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे और सभी को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। तो ये छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ मैं आपके और माशाल्लाह तमाम सुनने वालों की गुजार करना हूँ। माशाल्लाह हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज्जत माशाल्लाह मोहतरम शकील साहब आए थे और अपने मखसूस अंदाज में, कहते हैं कि उनका अंदाज भी निराला होता है और उनका इंतखाब भी जो होता है लाजवाब होता है।
0: वो शायद फराज ने इन्हीं के लिए कहा था ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: शकील साहब के लिए
1: जनाब मोहतरम शकील साहब, तो कहते हैं ना वो किसी तारीफ के मोहताज ही नहीं है के हाल, उनका तारीफ कराना भी जो होता है ना वो यकीन करे कि हमारे जैसे छोटे बंदे के वो इख्तियार भी नहीं है।
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, वो बाहर की हवा है।
1: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को, अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी पाक फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: तो ये क्योंकि ये लोग और आप जैसी माशाल्लाह हस्तियां ये उस्तादों में शुमार होती हैं, बल्कि
0: सलामत
1: रहे, के
0: सलामत रहे, सलामत रहे।
1: तो ये छोटी सी पोएट्री है जनाब।
0: जी नहीं,
1: शायर लिखता है, कोई मानूस मंजर आ गया है,
0: कोई मानूस मंजर आ गया है,
1: गली के मोड़ पर घर आ गया है।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कोई मानूस मंजर आ गया है, गली के मोड़ पर घर आ गया।
0: वो कहते ना कि सुनता नहीं है कोई भी मेरी पुकार को, दस्तक बदल गई कि मेरा घर बदल गया।
1: लाजवाब, क्या कहने, क्या कहने, मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
0: मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
1: मुझे वो साथ लेकर आ गया है।
0: क्या कहने, मुझे वो साथ लेकर आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब,
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
0: मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
1: मेरे आगे समंदर आ गया है।
0: बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह।
1: सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। शेर है एक जनाब।
0: जी जी,
1: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
0: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
1: तुम्हारे पांव में सर आ गया है।
0: क्या कहने, लाजवाब है, बहुत खूब,
1: थैंक यू सर। आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
0: इनायत,
1: वहां कोता था इकराम तुझसे,
0: क्या कहने,
1: यहाँ तेरे बराबर आ गया है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब।
1: थैंक यू चाचा, बहुत शुक्रिया टाइम देने का।
0: बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और तशरीफ लाते रहिएगा।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे हमारे बहुत ही मोहतरम और काबिले सद एहतराम रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से, जिन इज्जतों से, मोहब्बतों से, चाहतों से हमें नवाजते हैं, उसके लिए हम इनके बेहद ममनून हैं। और अब तरन हमारे साथ मौजूद हैं और लगता है कि आज ये भी कुछ कमाल करने जा रही हैं। क्या ख्याल है सना, कमाल करेंगी ना?
2: क्या लेकर आई हैं?
0: जी जी, जरा इन्हें भी
2: हमारे लिए आज क्या लेकर आई हैं?
3: मेरे पास एक पंजाबी,
0: मैंने सोचा कह रही हूँ मैं एक सूट लेके
2: दुकान पे काम करके से सूट ही सूट बात करना
0: जी जी,
3: पूरा दिन सूटो सूटो ही पड़ती है।
0: सही सही जी।
3: अच्छा जी, चलो अभी पंजाबी में आपको कुछ सुनाती हूँ।
0: जी जी।
3: केड़ा हाथ नहीं जरदा मैं, केड़ी सार नहीं मरदा मैं,
0: क्या कहने,
3: हसन वाली गलते भी हस नहीं सकिया डरदा मैं।
0: बहुत खूब,
2: बहुत अच्छे,
0: बहुत अच्छे,
2: बहुत हार्ट टचिंग।
3: किस्मत लुटन आई सी करदा ते की करदा मैं,
0: किस्मत लुटन आई सी करदा ते की करदा मैं। बहुत खूब,
3: सारे पांडी सारे पांडे खाली ने होका वी नहीं परदा मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: खुद मरिया वा तेरे ते,
0: खुद मरिया तेरे ते,
3: खुद मरिया वा तेरे ते, ते तो नहीं समझदा मैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने, जी जी। और कुछ और भी सुनाइए करण, हमारे पास एक दो।
3: वैसे ना मेरी उर्दू की थोड़ी सी मजाक बनते हैं
0: हर बार, लेकिन बहुत अच्छा आप पढ़ती हो, क्यों आप ऐसे सोचती हो,
3: लेकिन इस बार सुनाऊंगी।
0: जी जी।
3: किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो,
0: वाह वाह,
3: मेरे मैं दोस्त पुराना ही सही मगर जिंदा हूँ।
0: बहुत अच्छी,
2: क्या बात, क्या बात,
0: क्या कहने,
2: क्या कहने।
3: और इसी के साथ प्रवीण सकीर कहती है, तुमने कहा था कि हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था कि हर शाम तुम्हारा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो जहाँ तुम्हारे शहर में शाम ही नहीं होती।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
3: आई थिंक मुझे उर्दू में शायरी नहीं करनी चाहिए।
2: नहीं, समझ आई है,
0: कोशिश करनी चाहिए। देखिए हम सब सीख रहे हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी सीखते हैं,
2: टाइम है हमारे पास,
0: अच्छा लगता है। जी आप भी कुछ सुनाइए।
2: मैं सुनाऊंगी आपको बहुत ही प्यारी सी गजल, दिल की बातों को जमाने से छुपाया हमने।
0: वाह वाह।
2: दिल की बातों को जमाने से छुपाया हमने, अपने एहसास को खामोश बनाया हमने,
0: अपने एहसास को खामोश बनाया हमने। बहुत
2: तेरी यादों ने कई ख्वाब सजाए दिल में, फिर भी हर दर्द को हंस कर ही निभाया हमने।
0: बहुत खूब, बहुत।
2: राह उल्फत में कभी धूप कभी छांव मिली, हर कदम सब्र का चिराग जलाया हमने।
0: बहुत खूब।
2: वक्त बदला तो कई लोग बदलते देखे, अपना किरदार मगर खूब बचाया हमने।
0: बहुत अच्छे।
2: आज भी दिल में उम्मीदों का दिया रोशन है, हर अंधेरे को मोहब्बत से मिटाया हमने।
0: बहुत खूब, देखा,
2: दिल की बातों को जमाने से छुपाया हमने।
0: क्या
3: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।
2: हमारे साथ हीर भी मौजूद है इस वक्त।
0: हीर को हम थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद लेंगे, ताकि फिर
2: लाइव पे हीर हमारे साथ, आप ब्रेक पे जाएं।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: और सामिन्य ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। और अब लाइन पे हमारे साथ टिकटॉक की महफिल में हमारे जितने भी साथी हैं सभी को खुश आमदेद कहते हैं। बताइए कौन कौन से हैं इस वक्त
1: जी। इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं हमारी प्यारी सी हीर फ्रांस से। अस्सलाम वालेकुम हीर, कैसी हैं आप?
0: आपको आवाज आ रही है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम, आप बताइए।
0: अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत।
1: उसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी कॉलर मौजूद है सुंदस।
0: सुंदस आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हम।
3: सुंदस थैंक यू सो मच,
0: खुश आमदेद, वेलकम आज की इस बस में। और अगले हमारे कौन से मेहमान हैं
1: जी? हमारा नेक्स्ट कॉलर है बहुत ही प्यारे से हमारे हैं कॉलर्स हैं AMK, शी इज वेरी क्यूट DP के थ्रू पे, और वो उन्होंने पहली बार हमें ज्वाइन किया आज,
0: उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं।
1: उसी के साथ हमारे अनदर कॉलर हैं अब्दुल्ला जी,
0: अब्दुल्ला साहब
1: UAE से। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए और हमारे टिकटॉक लाइव को ज्वाइन करने के लिए।
0: तो अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो भी आप में से जो भी पहले बोलेगा वो पहले आ जाएगा, यूं करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए।
1: चलें जी, अब बताएं कौन पहले आना चाहेगा।
0: मुझे लगता है कि सुंदस की आवाज सबसे ज्यादा है,
1: एंट्री मारेंगे,
0: सुंदस से एंट्री मारेंगे सबसे पहले। जी सुंदस।
3: नहीं, मैं पुरानी कॉलर हूं ना इसलिए।
1: हाँ, चले मेरी जान, आप सब हमारे लिए बराबर है, तो प्लीज इशारा कीजिए, प्लीज आ जाइए,
0: सुनाइए आज, देखते हैं क्या सुनाती
3: है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत ही सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
3: कहते हैं आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
0: आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
3: पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते ना कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है।
1: क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
3: राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल, अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल, जिंदगी तू ही बता कितना सफर बाकी है।
3: क्या कहने
0: जी जी,
1: बहुत अच्छे।
3: एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों,
0: एक ही नदी के हैं ये
3: दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो।
1: क्या बात,
0: क्या कहने, लाजवाब है, लाजवाब।
3: आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कोच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो।
0: बहुत खूब,
3: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे,
0: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे।
3: नींद रखो या ना रखो, म्यारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
3: ये हवाएं उड़ ना जाए लेके कागज का बदन,
0: वाह वाह।
3: ये हवाएं उड़ ना जाए लेके कागज का बदन, दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रख।
0: क्या कहने, मुझे मोहसिन नकवी का वो शेर याद आ जाता है कि हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले।
3: क्या बात, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां, क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो।
0: क्या
1: क्या बात,
0: रात अंदोरी, खूबसूरत।
3: आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी
0: रखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी जी। और भी कोई गजल है तो सुना दीजिए, हमारे पास वक्त है।
3: तुझे जिंदगी का शऊर था,
0: तेरा क्या बना,
3: क्या बना।
0: हसन अब्बास रजा की, वाह वाह
3: जी जी
0: जी जी।
3: तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना।
0: मुझे इससे वो फिल्मी डाला गया था जैसे कालिया तेरा क्या बनेगा।
3: वो तेरा की बनया हुए।
0: जबरदस्त है, जबरदस्त है जी जी।
3: अच्छा चले, वो शकील भाई भी हंस रहे होंगे हमें।
0: ऐसे ही, ऐसे ही है,
3: ये क्या ये पंगे करती रहती है बीच में। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए,

0: वाह वाह,
1: मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया,
0: तेरा क्या बना
1: तेरा क्या
0: वो
1: बना।
0: न जाने वो डाला क्यों बार बार जब भी आप कहती
1: अच्छा मैं इसको ना फिर चेंज ही कर देता। वैसे वो आप अक्सर मुझे कहते हैं ना, वो अपनी रवायात को मत छोड़ो,
0: जी,
1: तो क्या
0: आप
1: करें, अपनी रवायात पूरी
0: मुझे
1: करें।
0: याद है ये आपकी रवायत है तो इसी के मुताबिक चलें। आप सवाल ले लीजिए। जी, आप जारी रखें अपनी गजल। जी,
1: ओके
0: हेलो।
1: चले इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना,
0: जी, होल्ड करिए।
1: दर दरिया के किनारे तो नहीं होते ना,
2: बहुत अच्छे,
0: वाह वाह, क्या
2: बहुत
0: कहने, क्या कहने।
1: रंजिशें हिजर का म्यार घटा देती है,
0: रंजिशें हिजर का
1: रोज
0: मैार
1: जाने
0: घटा देती है, वाह वाह,
1: रोज जाने से गुजारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: शुक्रिया। रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को,
0: रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, क्या
1: वो भी अर्शों से उतारे तो नहीं होते ना।
0: कहने, लाजवाब है, वाह वाह।
1: होंठ सीने से कहाँ बात छुपी रहती है,
0: वाह वाह,
1: बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: हिजर तो और मोहब्बत को बढ़ा देता है,
0: वाह वाह,
1: अब मोहब्बत में खिसारे तो
0: तो
1: नहीं
0: नहीं होते
1: होते
0: ना,
1: ना।
0: बहुत अच्छे।
1: एक शख्स ही होता है मताए जान भी, एक शख्स ही होता है मताए जान भी, दिल में अब लोग भी सारे तो नहीं होते
0: हाँ
1: ना।
2: क्या
0: हाँ
2: बात
0: क्या
2: है,
0: कहने, इसे
2: बहुत
0: फिर से पढ़िएगा।
1: अच्छे।
0: कहते हैं ना कि निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो, निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो, मोहब्बत की नजर से हर बशर देखा नहीं जाता। क्या कहने।
1: एक शख्स ही होता है मताए जान भी,
0: हाँ,
1: दिल में अब लोग भी सारे तो
0: तो
1: नहीं
0: नहीं होते
1: होते
0: ना,
1: ना।
0: बहुत अच्छे,
1: इतने बेजान सहारे तो
0: तो
1: नहीं
0: नहीं
1: होते
0: होते ना,
1: ना,
2: क्या बात है,
1: दर दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत
1: थैंक
0: अच्छे,
1: यू सर,
0: बहुत अच्छे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तशरीफ लाते रहिएगा, महफिल
1: थैंक
0: में
1: यू सर।
0: जैन रहे हैं। हो सकता है दोबारा आपको एक बार
2: आपको भी
0: फिर
2: फिर मौका मिल जाए।
0: चाय की प्याली के लिए दावत
2: जी जी
0: दें।
2: बिल्कुल
0: तो आप हमारे साथ नेक्स्ट
2: जी,
0: कौन
2: नेक्स्ट
0: है?
2: हमारे साथ है हीर। हीर प्लीज
0: हीर आ जाइए।
2: आ जाइए प्लीज।
0: जी,
1: अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर आप सबको।
2: वालेकुम
0: वालेकुम
2: सलाम,
0: अस्सलाम, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के रंगे महफिल में।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी,
0: वाह वाह, दिल है उदास चुप
1: दिल है
0: है,
1: उदास चुप है सितारों की जिंदगी, आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए, फोन के पास आ जाइए, आपकी आवाज
1: ओके
0: थोड़ी सी
1: जी,
0: कम है।
1: ओके
0: जी
1: ओके
0: जी जी
1: ओके ओके, मैं देखती हूँ,
0: जी जी
1: चलिए जरा। हाँ जी चलिए, मैं
0: अब
1: दोबारा से
0: परफेक्ट है,
1: पढ़ती
0: अब
1: हूँ। कहते
2: परफेक्ट
1: हैं
0: है, अब
1: कि
0: परफेक्ट।
1: दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी,
0: वाह वाह,
1: आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: फूलों की दिलकशी हो के तारों की जिंदगी,
0: फूलों की दिलकशी हो के तारों की
1: फूलों की
0: जिंदगी,
1: दिलकशी हो के तारों की जिंदगी, तेरी तेरी नजर है कितने नजारों की
0: बहुत
1: जिंदगी।
0: खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने।
1: रास्ते हों बेचिराग तो कुछ सूझता नहीं,
0: रस्ते हूँ बेचराग
1: रास्ते
0: तो
1: हों
0: कुछ सूझता
1: बेचराग तो
0: नहीं,
1: कुछ सूझता नहीं, यूं ही गुजर रही है हजारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। जी,
1: जज्बे हवस के पलते हैं सामान्य ऐश में,
0: वाह वाह, क्या कहने,
1: जज्बे हवस के पलते हैं सामान्य ऐश में, बढ़ती है खारो खस में शरारों की
0: बहुत
1: जिंदगी।
0: खूब, बहुत
2: बहुत
0: खूब।
2: अच्छे,
1: लफ्जों में आ सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ,
0: लफ्जों में आ सकेगी वो
1: लफ्जों
0: तर्ज
1: में
0: अदा
1: आ
0: कहाँ,
1: सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ, एक खामोशी हजार इशारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने।
1: देखो तो जुल्मतों में फरोजा है कुछ चराग,
0: देखो तो जुल्मतों में
1: देखो
0: फरोजा
1: तो
0: है कुछ
1: जुल्मतों में
0: चराग,
1: फरोजा है कुछ चराग, समझौता तो एक पयाम है तारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब,
2: बहुत
0: लाजवाब
2: अच्छे।
0: है।
1: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई,
0: जलवे भी चाहते
1: जलवे
0: हैं,
1: भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई, नजरे ना हो तो क्या है नजारों की
0: बहुत
1: जिंदगी।
0: खूब, बहुत खूब। ये शेर लाजवाब है, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
1: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई, नजरें ना हो तो क्या है नजारों की जिंदगी।
2: बहुत खूब, बहुत अच्छे।
1: दुनिया तो ये रातें मुसलसल का नाम है, दुनिया तो ये रातें मुसलसल का नाम है, कितनी कितनी सुबक है वक्त के
0: धारों की जिंदगी। क्या कहें,
1: उससे तो लाख दर्जा खजा में सकून था, उससे तो लाख दर्जा खजा में सुकून था, नासूर बन गई है बहारों की जिंदगी।
0: लाजवाब है, बहुत खुश।
1: इल्जाम ये है क्यों न रहे आस पास में, इल्जाम ये है कि क्यों न रहे आस पास हमसे, खफा खफा है सहारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सौदा को,
0: वाबा
1: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सवाद को, शब में कुछ और होती है तारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत।
1: चर्चे गली गली सही फसले बहार के, चर्चे गली गली सही फसले बहार के, तेरे बगैर क्या है बहारों की जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने,
2: बहुत अच्छे।
0: कहते ना कि चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, ए चांद डूब जाके तबीयत उदास है।
1: अरे अरे अरे, क्या कहने हैं, बहुत हो जी, बहुत हो
2: जी। तो फिर अभी हम देते हैं टाइम आई डोंट केयर को, अब्दुल्ला जी अगर आप हमारे साथ स्टिल मौजूद हैं तो
0: जी, हम लाइव लेते हैं।
2: हाँ जी, और हीर तो हमारे साथ लास्ट मिनट तक,
0: हीर आपने हमारे साथ ही रहना
2: जी। अब्दुल्ला जी, आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
3: जी बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए बेडफोर्ड एशियन रेडियो का। आप सब
2: आपको खुशामदीद कहते हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो में।
3: शायर चेंज कर दिया मैंने
0: जी, जी अच्छा किया
2: जी।
3: फरमाते हैं कि इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
0: इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
3: कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशवर फिर भी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
3: ना हो जाए। बहुत अच्छे। और बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
0: बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
3: नहीं मतलब मुझे, मतलब से मतलब है मैं तुमसे लड़ नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब।
3: बहुत शुक्रिया। और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है,
0: यहाँ हर शख्स
3: खुदा भी, जी बिल्कुल
0: जी जी,
3: खुदा भी वो कि जो अपनी ही जोली भर नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बहुत, क्या ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा, ये अच्छा है।
3: शुक्रिया। और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है, और खुदा भी वो कि जो अपनी ही जोली भर नहीं सकता।
0: बहुत खूब। कहते ना कि खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, वो देना भी चाहे तो क्या देंगे किसी को।
3: बिल्कुल, बहुत खूब। और मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
0: मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
3: नहीं उल्फत, फकत लफ्जी मोहब्बत है, मैं तुम पे मर नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। कहते ना कि चाहत हो मोहब्बत हो, कोई गम हो के खुशी हो, चाहत हो मोहब्बत हो, कोई गम हो के खुशी हो, हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं रखते, और नहीं रखते तो हैं हम और भी कुछ काम जरूरी, लेकिन तेरी चाहत से ज्यादा नहीं रखते,
3: नहीं रखते बिल्कुल। और तुम्हारी बात सुन ली है, बहुत दुखी कहानी है।
0: वाह वाह, क्या कहने।
3: सुनो तुम बाद में आना, अभी कुछ कर नहीं सकता,
0: कर नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत।
3: और मोहब्बत की मुसाफत ने बहुत जख्मी किया मुझको, अभी ये जख्म भरने हैं, मैं आहें भर नहीं सकता।
0: लाजवाब, बहुत
3: बहुत शुक्रिया। और सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफरत सिखाई है,
0: वाह,
3: मगर अब अजनबी हो तुम, मैं नफरत कर नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: बहुत शुक्रिया। और भले भले मैंने नहीं चाहा, मगर तुमने तो चाहा है,
0: वाह
3: तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं
0: कर नहीं
3: सकता।
0: सकता।
2: बहुत अच्छे, बहुत खूब,
0: बहुत
3: और बहुत शुक्रिया। और न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है,
0: न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है।
3: खौफ खाता है जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता,
0: क्या कहने, जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता। बहुत
3: डर नहीं
0: खूब,
3: सकता।
0: बहुत
3: बहुत
0: खूब।
3: शुक्रिया। और गौर कीजिएगा, अरे ओ इश्क, अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है।
0: हाँ, क्या मिसरा है, वाह वाह। अरे ओ इश्क जा काम कर, वाह वाह,
3: हाँ, अरे इश्क जा काम कर किसको बुलाता है,
0: बुलाता है।
3: हुस्न बाजार में बिकता है सूली चढ़ नहीं सकता।
0: बहुत खूब,
2: लाजवाब,
0: बहुत खूब, लाजवाब है, लाजवाब है।
3: बहुत
0: बहुत
3: शुक्रिया। और यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है,
0: यहाँ हर एक चेहरे पे अलग तहरीर लिखी है।
3: यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है, मेरी मेरी आंखों में आंसू है अभी कुछ पढ़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
3: बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद चांदी सजाता हूँ,
0: मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद चांदी सजाता
3: खुद
0: हूँ।
3: चांदी सजाता हूँ, मैं उसकी मांग में वादों का हीरे जड़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, नासिर काजमी का शेर याद आ गया कि रंग दिखलाती है क्या क्या उम्र की रफ्तार भी, रंग दिखलाती है क्या क्या उम्र की रफ्तार भी, बाल चांदी हो गए सोना हुए रुखसार भी।
2: बहुत अच्छे,
3: बहुत अच्छे। सर गौर कीजिएगा
0: किनारे।
3: कि भले झूठा मुनाफिक हूँ बहुत धोखे दिए लेकिन,
0: हाँ, क्या मिस्टर है,
3: भले झूठा मुनाफिक हूँ बहुत धोखे दिए लेकिन मेरा कुछ वक्त बाकी है जमीन में गड़ नहीं सकता।
0: क्या कहने, एक खास हस्ती के नाम ही ये शेर हम करते हैं। फिर
3: बहुत
0: से पढ़िएगा
3: अच्छा।
0: बाबा, फिर से
3: अच्छा,
0: पढ़िएगा
3: भले
0: ये शेर, बहुत
3: झूठा
0: अच्छा है।
3: मुनाफिक
0: हाँ
3: हूँ
0: हाँ
3: बहुत धोखे दिए,
0: बिल्कुल
3: मेरा कुछ वक्त बाकी
0: बाकी
3: है
0: है,
3: जमीन में गड़ नहीं
0: इंशाल्लाह
3: सकता।
0: वो वक्त आ जाएगा। बहुत जल्दी
3: मैं, गौर कीजिएगा फिर से, मैं
0: जी
3: उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं,
0: वाह वाह, क्या कहने।
3: मैं उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं,
0: हाँ,
3: मैं अपनी हद में रहता हूँ सो आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: बहुत शुक्रिया। और खुदा हूँ न वली हूँ मैं, फकत रिंदे अली हूँ मैं।
0: वाह वाह, क्या मिसरा है, वाह वाह।
3: बहुत शुक्रिया। खुदा हूँ न वली हूँ मैं, फकत रिंदे अली हूँ मैं कुछ भी दे नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: बहुत
0: गमों की
3: शुक्रिया।
0: धूप में रास्ता बना के चलता हूँ, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलता हूँ, अली की आल हूँ सर को उठा के चलता हूँ।
3: हाय हाय हाय,
2: बहुत अच्छे।
3: और शेर आखिर है कि अली कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज।
0: वाह वाह, क्या मिसरा है।
3: अली कुछ शेर हैं रहते हैं मगर लिखने
0: लिखने
3: नहीं
0: नहीं।
3: हरगिज, किसी की लाज रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि
3: किसी की
0: अशार
3: लाज रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता।
0: अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए।
3: बहुत अच्छे, क्या
0: जनाब
3: कहना है।
0: जी,
3: बहुत शुक्रिया जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका। अदा करते हैं, लाइन पे ही रहिएगा, अभी हमारी महफिल में शरीक रहिएगा। हमारे पास तकरीबन 5-7 मिनट
2: जी। हमारे साथ नेक्स्ट हमारी हैं AMK जी। अस्सलाम वालेकुम AMK, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं।
0: जी
4: जी जी, अस्सलाम
2: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया।
4: जी मैं मलेशिया में हूँ इस वक्त।
0: मलेशिया से आप हैं और आपको खुश आमदेद कहते हैं। वहाँ पे इस वक्त वक्त क्या होगा।
4: जी इस वक्त रात के 4:50
0: रात के 4:45 कमोबेश। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बार आप आई हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं हम
2: जी।
0: रंगे महफिल में।
4: बहुत शुक्रिया
0: जी,
4: जी,
0: जी।
4: मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी।
0: इनायत कीजिए
4: जी।
0: जी जी।
4: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे,
0: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे। फराज की खूबसूरत गजल है, वाह वाह
4: जी। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे
0: प्यासा
4: रखे।
0: क्या कहने, क्या कहने फराज की।
4: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना,
0: वाह वाह।
4: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे
0: अल्लाह रखे। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये खूबसूरत शेर है इस गजल का।
4: जी जी।
0: उम्र
4: भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे
0: अल्लाह
4: रखे।
0: और मुझे मुस्त नकवी का वो शेर इससे याद आ जाता है कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे।
4: वाह जी।
0: इनायती
4: हमको अच्छा नहीं लगता
0: कोई
4: कोई हम नाम
0: हम
4: तेरा,
0: नाम तेरा खूबसूरत है, वाह वाह।
4: हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर हो। नाम भी तुझसा
0: रखे, क्या कहने। कहते हैं ना कि नामों का एक हजूम सही दिल के आसपास, नामों का एक हजूम सही दिल के आसपास, दिल एक नाम सुन के धड़कता जरूर है।
4: वाह जी वाह। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है।
0: वाह वाह।
4: दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है,
2: जो
4: किसी और का होने दे ना, ना अपना रखे।
0: क्या कहने। कहते हैं ना कि उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, जो किसी और को हमारा नहीं होने देता।
4: वाह जी
0: जी जी। इनायत की
4: कम नहीं तमाए इबादत भी तो हिर से जर से, कम नहीं तमाए इबादत भी तो हिर से जर से, फुकर तो वो है कि जो दीन ना दुनिया रखे।
0: क्या कहने। कहते ना कि वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, खैरात भी सखी से न मिलती फकीर को।
4: वाह जी वाह
0: जी।
4: हंसना इतना भी फकीरों के अकेले पन पर,
0: वाह वाह।
4: हंसना इतना भी फकीरों के अकेले पन पर, जा खुदा मेरी तरह तुझको भी तन्हा रखे।
0: क्या कहने क्या कहने। कहते ना कि तेरे होते हुए आ जाती थी दुनिया सारी, ये भी फराज कही है कि तेरे होते हुए आ जाती थी दुनिया सारी, आज तन्हा हूं तो कोई नहीं आने वाला।
4: जबरदस्त। ये कनात है अतात है कि चाहत है फराज,
0: वाह वाह।
4: ये कनात है अतात है या चाहत है फराज, हम तो राजी है वो जिस हाल में जैसा रखे।
0: यारब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, यारब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे।
4: वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा लगा। आपका नाम जान सकते हैं?
2: एम के
4: जी। मेरा नाम
2: आप हमेशा ज्वाइन कीजिएगा सैटरडे पे भी हमारे प्रोग्राम में। जी बिल्कुल जरूर आइएगा।
0: सैटरडे और वेंसडे को हमारा रंगे महफिल होता है, तो जरूर
4: तशरीफ लाइए।
0: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सलामत रहे। अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। हमारे पास नेक्स्ट कौन आएगी? हीर, कुछ है अच्छा सा?
0: जी हीर,
2: हीर अब अपना माइक ओपन कर लें।
5: जी जी बिल्कुल,
2: आ जाए मेरी जान।
5: कहते हैं कि सलीके से अगर तोड़े तो कांटे टूट जाते हैं।
0: सलीके से अगर तोड़े तो कांटे
5: टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत
5: मोहब्बत बोझ बनकर ही भले रहती हो कांधों पर।
0: जी जी।
5: मोहब्बत बोझ बनकर ही भले रहती हो कांधों पर, मगर मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शमीम भी हमारे साथ हैं, अगर आप उन्हें ले।
2: शमीम जी आ गई हैं?
0: जी, शमीम लाइन पे थी अभी हमारे साथ, अगर सुन रही हैं तो वो भी हमें ज्वाइन कर लें, उनसे भी हम कम से कम कुछ सुन लें।
2: शमीम जी आपने आना है हमारे साथ, तो प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूं।
0: जी जी, आप जल रखे
2: हैं। वो कह रही हैं कि मैं नेक्स्ट जो है आपने मुझे 7 o'clock कॉल करके बताना, ताकि मैं आप स्टूडियो में तशरीफ
0: ले आऊं। जी जी, हीर जल रखे हैं।
5: कहते हैं कि जी, कहते हैं कि बिछड़ कर आपसे ये तजर्बा हो ही गया आखिर, बिछड़ कर आपसे ये तजर्बा हो ही गया आखिर, मैं अक्सर सोचता था लोग कैसे टूट जाते हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
5: बहुत दिन मसलहत की कैद में रहते नहीं जज्बे, बहुत दिन मसलहत की कैद में रहते नहीं जज्बे, मोहब्बत मोहब्बत जब सदा देती है पिंजरे टूट जाते हैं।
0: वाह वाह, बहुत बहुत।
5: ज्यादा कामयाबी भी नुकसान देती है, ज्यादा कामयाबी भी नुकसान देती है, फलों का बोझ बढ़ने से भी पौधे टूट जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
5: लास्ट टू लाइन्स हैं, कहते हैं कि सितम ये है मैं इस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूँ।
0: वाह वाह।
5: सितम ये है मैं इस रास्ते पे नंगे पैर चलता हूँ, जहाँ चलते हुए लोगों के जूते
0: टूट जाते हैं। लाजवाब, लाजवाब।
2: बहुत बहुत
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। और मेरे ख्याल में शमीम आ गई है हमारे साथ।
2: नो, शमीम बाजी कह रही है वो नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगी।
0: अच्छा,
2: और तो अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है।
0: जी जी। और सामीन, अब आप सभी सुनने वालों का दिल किया था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए आज के रंगे महफिल से आपसे चाहेंगे इजाजत। जी तरन तरन को माइक देते हैं। तरन आपने भी आज खूबसूरत शायरी सुनाई थी, आपका भी हम
5: जी
0: शुक्रिया अदा करते हैं। आप सुनने वालों से अल्लाह हाफिज कह लीजिए। जी जी माइक खुली आपकी। जी जी
5: जी सामिन, मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ, अभी घर जाने का टाइम भी हो गया है मेरा। सो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं सैटरडे, भूलना मत इसी टाइम।
0: अल्लाह जी जी
2: जी सामीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना खान और उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इस रंगे महफिल प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हम इंजॉय किया होगा, आपने हमारी लाइफ का प्रोग्राम बहुत इंजॉय किया होगा। इसी तरह हम आपके लिए प्यारे प्यारे गीत, प्यारे प्यारे इशार लेके आते रहेंगे और आप इसी तरह हमारे स्टूडियो पे कॉल करें और इसी तरह हमारे टिकटॉक लाइव को लाइक करें और शेयर करें और हमारे टिकटॉक लाइव पे भी ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से भी आपको अल्लाह हाफिज़।
0: और सामीन आप इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हसन को भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली महफिल में आपसे होगी बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
6: Authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
13: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
15: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: UK।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
6: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: You're listening to Bradford Asian Radio.
12: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
6: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
12: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Channel 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
8: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
8: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.